ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओ, मैं या तो हां भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओ कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कने। वहां सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

जन धर्मशाला गणेश श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनने न कार्यक्रम दा अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

हाँ बोला करते ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी थी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देना कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: उदित, पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: पता नहीं, उसे टीबी है।
2: और भाई, लास्ट बेंच को मजा अकेले।
3: पता है ना, मुझे टीबी है।
2: चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो, कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में, और रहते ही कौन है?
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं, मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूबी वाला।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

0: जोकर।
1: गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: पे
1: क्या
0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का ये सफर अब यहीं पर होता है संपन्न। ज्योति को दीजिए अब अनुमति, जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
3: पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
1: और भाई लास्ट बेंच को मजा अकेले।
4: पता है ना मुझे टीबी है।
1: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
5: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
6: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
7: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
6: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
7: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
6: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
7: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
6: कसम खाओ।
7: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
6: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन है?
8: भारी मिस्टेक हो गया सर।
7: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
9: गजब टोपी बाजा।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। और श्रोताओं, अब से लेकर 11 बजे तक रहूँगी आपके साथ, करूँगी आपके साथ बातें, मनोरंजन करेंगे आपका प्यारे प्यारे गीत सुनवाकर और साथ ही साथ आपको धर्मशाला और आसपास की जानकारियाँ भी आपके साथ हम साझा करेंगे। आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए सबसे पहले जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान। उन्नीस डिग्री सेल्सियस इस वक्त धर्मशाला का तापमान है और वातावरण में नमी है 93%। और श्रोताओं, धर्मशाला का जो मौसम है वो कुछ इस तरह का है कि आंखों देखा हाल आपको बताएं, मैं आ रही थी धर्मशाला से भी थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा क्या 10-12 किलोमीटर ऊपर, जो कि हाईएस्ट कह सकते हैं बारिश वाला स्थान है, वहाँ पे 6:30 से लेकर अभी 8-8:30 बजे तक कोई बारिश नहीं हो रही थी। और जैसे ही धर्मशाला से सिद्धबाड़ी की ओर हमने रुख किया तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश जो है वो शुरू हो गई। और साथ ही साथ रुचिका से मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि योल वाली साइड भी बारिश हो रही है। तो श्रोताओं, ये है कुदरत और कुदरत का रंग, और इसमें हम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। बस अगर कुदरत मेहरबान है तो उसका आनंद उठाइए, और कुदरत कहीं पे हमें चेतावनी दे रही है तो कुदरत की उन चेतावनियों को भी हमें समझना चाहिए। और आप सभी जानते हैं इन दिनों जो है वो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा जो है वो भूस्खलन के केसेस आते हैं, कहीं पे पहाड़ गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं। खैर, सुबह सुबह इस तरह की अनहोनी और इस तरह की दुर्घटनाओं की बातें करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो हो रहा है, जो घट रहा है, वही आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कल परसों की ही बात है, चंबा से लाड़ू जाते समय एक परिवार दुर्घटनाग्रस्त, उनकी गाड़ी हो गई और पूरे का पूरा परिवार, छोटी बच्ची समेत, वो एक भी व्यक्ति जो है वो जिंदा नहीं बचा। तो खैर, कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हम थोड़ी सी जो है अपनी तरफ से सावधानी बरत सकते हैं, और कई बार इस तरह की अनहोनियों को हम अपनी सूझबूझ और समझदारी के साथ जो है वो टाल सकते हैं। श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और बातों का सिलसिला शुरू हो गया है और साथ ही साथ अब गीत संगीत और मनोरंजन की ओर रुख करते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में कार्यक्रम का ये सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

श्रोताओ, आज का विचार, जो सीख हमें जिंदगी में हमारी असफलता देती है, वही असफलता हमें जिंदगी में सबसे मजबूत इंसान बनाती है। श्रोताओ, आज का विचार आपके लिए फिर से दोहरा रहे हैं कि जो सीख हमारी असफलता हमें जिंदगी में सिखाती है और वही असफलता हमें जिंदगी में सबसे मजबूत इंसान बनाती है। वो किस तरह से? श्रोताओ, वो इस तरह से कि हम अपनी जिंदगी में अपनी ही असफलताओं से जो कुछ सीखते हैं और उन असफलताओं से अगर हम सबक लेते हैं तो हम उस सीख से, उस सबक से अगर चाहे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम जिंदगी में सफल हो रहे हैं और सफल होते ही जा रहे हैं और असफलता का स्वाद हमने नहीं चखा है, हमें लगेगा कि जिंदगी में सब कुछ बहुत आसानी से होता है और ऐसे ही होता रहता है। इसलिए जब तक हम असफल नहीं होंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि सफलता का जो असली मज़ा है वो क्या है, और हमारी असफलताएं ही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए जिंदगी में आप कभी असफल होते हैं तो निराश मत होइए, अपनी उस असफलता से ये सबक लीजिए कि वो असफलता आपको जीवन में क्या सिखाना चाहती है। श्रोता, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और आज का विचार आपके साथ साझा करने के बाद दोस्तों, अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब समय है प्रादेशिक समाचारों का। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जारी रहेगा 9:30 पर भी।
1: सरकारी कर्मचारी सेवा शर्त अधिनियम किया रद्द, प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मिलेंगे वरिष्ठता व वित्तीय लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा भारत में क्षय रोग के मामलों में आई 21% की कमी, इलाज की कवरेज दर 92% तक पहुंची। राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी नई इलेक्ट्रिक बसें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन जिला के क्यारी घाट से करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत हमीरपुर जिला की 20,800 महिलाओं का किया जा रहा है कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर। और पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा आज से शुरू, पहले दिन आज सुबह 90 यात्रियों का जत्था किया गया रवाना। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश उच्च न्यायालय के कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम को रद्द किए जाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश भर्ती व सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को रद्द कर दिया था, जिसे सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि वे हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देना चाहते। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को इस आदेश को लागू करने के लिए 4 महीने का समय दिया है। इस आदेश के मुताबिक सरकार को अपने सभी अनुबंध कर्मचारियों को पहली नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता और सभी वित्तीय लाभ देने होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत में टीबी के मामलों में 21% की कमी आई है, जो वैश्विक स्तर की तुलना में लगभग 2 गुना है। उन्होंने बताया कि देश में टीबी मरीजों के इलाजों की कवरेज दर 92% तक पहुंच गई है। नड्डा ने नई दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सांसदों के साथ बैठक की और टीबी उन्मूलन अभियान में सांसदों से जन आंदोलन का नेतृत्व करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री ने सांसदों से समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, टीबी की जल्द पहचान और जिला स्तर पर निगरानी को मजबूत करने का आह्वान किया, ताकि वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपराधों की जाँच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने व त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम सोलन जिला के क्यारी घाट में किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री परिवहन निगम के हिम बस प्लस स्मार्ट ट्रेवल कार्ड का शुभारंभ भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत हमीरपुर जिला में 20,800 महिलाओं को शामिल कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से इन महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई के अलावा विभिन्न विधाओं में कुशल बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ये योजना वर्ष 2023 में शुरू की थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
3: जिले की 20,800 महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जा रहा है। योजना के तहत महिलाओं को उनकी रुचि और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे स्वयं का रोजगार शुरू कर अपनी आय बढ़ा सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें सिलाई कढ़ाई, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, मसाला पैकिंग, हस्तशिल्प समेत अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण शामिल होगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1,00,000 रुपए तक पहुंचाना है। प्रशिक्षण के बाद पात्र महिलाओं को 1 से 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें वे अपना कारोबार शुरू या विस्तारित कर सके। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने शिमला शहर की सील बंद और प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन पास के शुल्क में कटौती कर दी है। इससे शहर में निजी वाहन चलाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार शिमला की सील बंद सड़कों पर निजी वाहनों के लिए सालाना पास शुल्क 15,000 रुपये से घटाकर 8,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा प्रतिबंधित सड़कों के लिए वार्षिक शुल्क 5,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा वाहन मालिकों को अब 6 महीने की अवधि का पास लेने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ग्रीन पंचायत योजना के तहत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला की गुब्बर पंचायत में भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जो जल्द ही बिजली उत्पादन शुरू करेगा। इस संयंत्र से हर वर्ष 8,00,000 यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
4: प्रदेश सरकार की ग्रीन पंचायत योजना ग्रामीण विकास और हरित ऊर्जा का नया मॉडल बनकर उभर रही है। कांगड़ा जिले के लंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुब्बर प्रगोड़ में 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जो जल्द बिजली उत्पादन शुरू करेगा। इस परियोजना से हर वर्ष करीब 8,00,000 यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। बिजली बिक्री से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा पंचायत के विकास कार्यों, जबकि एक हिस्सा अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। इससे गाँव को स्थायी आय का स्रोत मिलेगा और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते कार्बन उत्सर्जन की चुनौतियों के बीच ये परियोजना केवल हरित ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने का एक अभिन्न मॉडल भी प्रस्तुत करती है। विश्व बैंक के सहयोग से संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 8,00,000 यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा आज से शुरू हो गई है। आज सुबह किन्नौर जिला के तांगलिंग से करीब 90 यात्रियों का जत्था रवाना किया गया। जिला प्रशासन ने आज से 10 अगस्त तक ही यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया है। यात्रा समिति के अध्यक्ष व SDM कल्पा प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि प्रतिदिन 375 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इनमें से 125 ऑफलाइन, 175 ऑनलाइन और 75 श्रद्धालुओं को ऑन अराइवल श्रेणी के माध्यम से भेजा जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
5: आस्था, श्रद्धा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर किन्नर कैलाश यात्रा 2026 आज से विधिवत शुरू हो गई है। यह पवित्र यात्रा 30 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन और यात्रा समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा समिति के अध्यक्ष एवं SDM कल्पा प्रवीण कुमार भारद्वाज ने बताया, रेकी टीम की सिफारिशों के आधार पर यात्रा का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा किसी भी श्रद्धालु को गंदगी फैलाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी यात्रियों से केवल अधिकृत पंजीकरण के माध्यम से ही यात्रा करने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए मैं किन्नौर से सुमेश नेगी।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोरसिंगानकत ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया है। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के वरिष्ठता लाभों से जुड़े मामलों पर लगाई मुहर। इसी खबर को अमर उजाला ने सुर्खी दी है, हिमाचल के हजारों कर्मियों को सुप्रीम राहत, अनुबंध सेवाकाल का मिलेगा वरिष्ठतम लाभ। दिव्य हिमाचल लिखता है, 21 अगस्त से 3 सितंबर तक विधानसभा का मानसून सत्र संभव। मौसम से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, भूस्खलन व बारिश से 100 सड़कें बंद, 4 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारी सेवा शर्त अधिनियम किया रद्द। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मिलेंगे वरिष्ठता व वित्तीय लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, भारत में क्षय रोग के मामलों में आई 21% की कमी, इलाज की कवरेज दर 92% तक पहुंची। राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी नई इलेक्ट्रिक बसें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन जिला के क्यारी घाट से करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत हमीरपुर जिला की 20,800 महिलाओं का किया जा रहा है कौशल विकास। आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर और पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा आज से शुरू। पहले दिन आज सुबह 90 यात्रियों का जत्था किया गया रवाना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं और प्रादेशिक समाचारों के बाद और अंतराल के बाद सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोताओं, अंतराल के बाद अब सीधा सीधा लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब चलते हैं जानकारियों की ओर। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विनय कुमार ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों, उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रमाणित उत्पादों के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ISI प्रमाणित उत्पादों की खरीद से कोई भी उपभोक्ता उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न उत्पादों एवं ISI मानक चिन्ह ये सुनिश्चित करता है कि उनका निर्माण भारतीय मानकों के अनुरूप किया गया है तथा वे गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। कार्यक्रम में BIS के परमाणु शाखा के संयुक्त निदेशक शुभम तिवारी ने उपस्थिति अधिकारियों की विभिन्न उत्पादों एवं उपलब्ध ISI BSI स्टैंडर्ड मार्क तथा हॉलमार्क की पहचान की, उनकी प्रामाणिकता और उपभोक्ताओं के लिए उनके महत्व की विस्तृत जानकारी भी दी। श्रोताओ ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब लीजिए आनंद उठाइए गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

1491.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। तो आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई के दिन कुछ खास रहता है। जी हाँ, 30 जुलाई को एक बहुत ही खास दिन हम कह सकते हैं जो कि मनाया जाता है, और वो दिन है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व। हर साल 30 जुलाई को आज का दिन जो है वो मनाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। तो क्या है इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य, कब शुरू किया गया इस दिन को मनाने का सिलसिला, इसके बारे में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में अब समय हो रहा है आपके साथ आज के दिन के इतिहास को साझा करने का। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में।

श्रोताओं, आज यानी 30 जुलाई 1930 उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर फुटबॉल इतिहास का पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था। जुलाई 1935 महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। श्रोताओं, 30 जुलाई 1980 वानुअतु देश को फ्रांस और ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी।

23 जुलाई 2012 भारत के महान गणितज्ञ प्रोफेसर सी आर राव को अमेरिका का प्रतिष्ठित नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिए जाने की घोषणा हुई थी। श्रोताओं, आज ही के दिन विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस जो है वो भी मनाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, लोगों और देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने का दिन आज के दिन जो है वो मनाया जाता है। तो ये था आज के दिन के बारे में इतिहास में कुछ खास घटनाएं जो आपके साथ हमने साझा की। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में चलते हैं फिर से गीत संगीत की ओर। श्रोताओं, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

शुद्ध 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब आइए चलते हैं फिर से जानकारियों की ओर। जिला कांगड़ा के यूल स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। बुधवार को धमकी भरा ईमेल खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजा गया है, जिसमें विद्यालय के अलावा अन्य सरकारी संस्थानों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है और प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय योल के प्रधानाचार्य संजीव राणा की शिकायत पर पुलिस थाना धर्मशाला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) तथा 353(1)(b) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया है कि विद्यालय की आधिकारिक ईमेल पर खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें विद्यालय को बम से उड़ाने और अन्य सरकारी संस्थानों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस ईमेल के स्रोतों और धमकी देने वालों की पहचान करने के साथ साथ सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। श्रोताओं, ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब लीजिए कार्यक्रम में सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आज है 30 जुलाई का दिन, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस आज के दिन जो है वो मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरंभ किया गया था। आइए जानते हैं इस दिन का उद्देश्य और महत्व। लोगों को मानव तस्करी के खतरों और उसके बुरे प्रभावों के बारे में बताना और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाना। पीड़ितों के मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें न्याय दिलाना। सरकारों और समाजों को इस अपराध को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित करना। श्रोताओं, इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में संकल्प लेकर 30 जुलाई को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से लेकर आज तक ये दिन जो है ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। मानव तस्करी क्यों होती है और किस तरह से इसे रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है, इसके बारे में भी कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में सुनवाते हैं आप

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और फिर से रुक करते हैं श्रोताओं जानकारियों की ओर। प्रदेश सरकार ने शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियंस संशोधन अध्यादेश 2026 अधिसूचित किया है। अध्यादेश के अनुसार शिमला शहर में निजी वाहन मालिकों के लिए सील बंद एवं प्रतिबंधित सड़कों के लिए पास शुल्क में उल्लेखनीय कमी की गई है। वर्तमान में सील बंद सड़क के लिए प्रति निजी वाहन प्रति सड़क वार्षिक शुल्क ₹15,000 लिया जाता था, जिसे घटाकर ₹8,000 प्रति सड़क प्रति वाहन कर दिया गया है। इसी प्रकार प्रतिबंधित सड़क के लिए निजी वाहन प्रति सड़क वार्षिक शुल्क ₹5,000 से घटाकर ₹3,000 प्रति सड़क प्रति वाहन कर दिया गया है। अध्यादेश में ये भी प्रावधान किया गया है कि वाहन मालिक अब सील बंद एवं प्रतिबंधित सड़कों के लिए 6 माह की अवधि का पास भी प्राप्त कर सकेंगे। श्रोताओं ये थी जानकारी। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आज है 30 जुलाई और आज के दिन मानव तस्करी को रोकने के खिलाफ आज का जो ये दिन है ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। मानव तस्करी को रोकने के लिए जन जागरूकता, सख्त कानून, डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव और समुदाय स्तर पर सतर्कता की आवश्यकता है। फर्जी नौकरी के विज्ञापनों से सावधान रहें। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या हेल्पलाइन को दें और पीड़ितों के पुनर्वास में सहयोग करें। श्रोता, मानव तस्करी को किस तरह से रोका जाता है जा सकता है इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। फर्जी विज्ञापनों से सतर्क रहें। अक्सर हम सभी जानते हैं कि आजकल बेरोजगारी बहुत है और जब भी कभी हमें कहीं इस तरह का कोई विज्ञापन दिखता है जिसमें हमें प्रलोभन दिया गया होता है कि कम मेहनत में अत्यधिक सैलरी वाली नौकरी प्राप्त करें या इस जगह आकर के जो है वो नौकरी जो है आप प्राप्त करें, तो इस तरह के जो विज्ञापन आते हैं जिसमें जिन्हें हम कह सकते हैं कि फर्जी विज्ञापन होते हैं जिसमें विदेश में खासकर नौकरी देने का लुभावना आपको प्रस्ताव जो है वो दिया गया होता है, ये सब जो है वो धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है और इस तरह के विज्ञापनों से भी लोगों को जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो की जाती है। इसके साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी बात, हमारे जो दस्तावेज होते हैं जैसे कि हमारा आधार कार्ड, हमारे पहचान पत्र, पासपोर्ट इत्यादि जो हमारे ज़रूरी कागजात होते हैं, उनका कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से जो है वो मिसयूज़ कर सकता है। अपने ज़रूरी कागजात जैसे पहचान पत्र, पासपोर्ट वगैरह को संभाल कर रखें और जहाँ पे ज़रूरत हो केवल वहीं पे दें, क्योंकि आपके आधार कार्ड के आधार पर भी बहुत से लोग आपकी पहचान का जो है वो गलत फ़ायदा उठा करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी जो चीज़ें हैं उनमें आपको फंसा सकते हैं। इस तरह से और भी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रख करके, जिनको ध्यान में रख करके हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं या अपना जो है वो योगदान दे सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में। आगे कार्यक्रम में और भी बातचीत करेंगे किस तरह से हम बचाव अपना और अपने अपनों का कर सकते हैं या जो लोग ऑलरेडी इसमें फंसे हुए हैं उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं इसके बारे में आगे कार्यक्रम में हम बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

0: शुद्ध 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, फिर से एक बार आपसे बातचीत करना चाहेंगे आजकल का जो मौसम है उसके बारे में।
1: प्यार मोहब्बत से ना।

जी अंशुता, बात कर रहे थे हम मौसम की कि बरसात का मौसम है और फिसलन होती है, लैंडस्लाइड होती है और बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं और हो भी रही है आए दिन। इस बार हम कहें कि चंबा जो है वो अत्यधिक प्रकृति की चपेट में है तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा। हम सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि चंबा में आए दिन कोई ना कोई अनहोनी घटना जो है वो हो रही है। और ऐसा माना जाता है, या चंबा के कुछ लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले पिछले कुछ एक सालों में, 4-5 सालों में जो है चंबा में बहुत अधिक वर्षा जो है वो हो रही है। बारिश पहले भी होती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी कि इन सालों में हो रही है। खैर, ये प्रकृति है श्रोताओं, और प्रकृति के साथ हम जो है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते और प्रकृति के साथ लड़ भी नहीं सकते कि पहले कम बारिश होती थी तो अब ज़्यादा क्यों हो रही है। ये नेचर है और नेचर अपने हिसाब से काम करती है, अपने हिसाब से चलती है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि नेचर को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर नेचर हमें पहले से ही जो है मौसम विभाग की जानकारी है कि बहुत अधिक बारिश हो रही है या अलर्ट वगैरह जब बताया जाता है तो हमें ये सब जानते हुए भी घरों से बाहर अनायास ही ऐसे ही नहीं निकलना है। बेहद ज़रूरी हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो किसी यात्रा में निकलना, तब आप पूरी सावधानी के साथ अपनी यात्राएं जो है वो प्लान कीजिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी आप इस मौसम का भी आनंद उठा सकते हैं और इस प्यारी सी जिंदगी का भी। इक्यानवे दशमलव 2 MHz पर आप हैं श्रोताओं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का अब अगला गीत आपके लिए बिल्कुल तैयार है।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और दोस्तों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर आज का जो ये दिन है ये मनाया जाता है और इसके बारे में कार्यक्रम में हम बात भी कर रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है ऑनलाइन का ही ज़माना है और वर्तमान समय में साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन स्कैम के जरिए भी लोगों को फंसाया जाता है और फंसाया जा रहा है। इसलिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मिलने वाले संदिग्ध प्रस्तावों से दूर रहे। कोई भी किसी भी तरह का प्रलोभन या इस तरह आपको लगे कि बड़ी अच्छी कोई स्कीम है या कुछ भी जिसको हम कह सकते हैं कि प्रलोभन है, उसमें आप आने से, उसमें फंसने से बचें। और कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह का, आप सभी जानते हैं कि आसानी से ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता, जो भी कुछ मिलता है उसके लिए कड़ी मेहनत लगती है और कड़ी मेहनत के बाद ही आपको नौकरी भी मिलती है और जो भी ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं वो आपको मेहनत के बलबूते पे ही मिलता है। इसलिए ऑनलाइन कभी भी आपको लगे कि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा आपको स्कीम या बहुत अच्छा कोई भी उत्पाद बेच रहा है या किसी तरह से आपकी जो है वो पहचान वो मांगता है, कोई आधार कार्ड या इस तरह से कोई आपसे कहता है कि दे दो, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरे दिमाग और बुद्धि के साथ काम लेना है और अपनी पहचान को सुरक्षित रखना है, किसी के भी प्रलोभन में नहीं आना है। तो ये बातें हैं श्रोताओं छोटी छोटी, जिनका हम ख्याल रख के, जिनको हम ध्यान में रख करके जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बच सकते हैं और बाकी लोगों को भी इस तरह की सलाह देकर उन्हें बचाया जा सकता है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, बरसात के मौसम में बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं, बहुत से स्कूलों में अभी छुट्टियां चल रही हैं और बहुत से स्कूल जो हैं वो स्कूल चल भी रहे हैं। और बरसात की छुट्टियां जहां पहले बहुत लंबी होती थी वहीं अब थोड़ी सी कम कर दी गई हैं। किसी स्कूल में 12 से 15 दिन की छुट्टियां हैं तो किन्हीं स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने की छुट्टियां हैं। और बच्चों को जो है वो होमवर्क भी दिया जाता है। और बच्चे जो हैं, जहां तक बात करें, पहले नानी के घर जाना, मासी बुआ इन सब के पास जाना मिलना, अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं कम हो गई हैं या यूँ कहें कि ख़त्म ही हो गई हैं। और कोविड के बाद एक ऐसा हम कह सकते हैं दौर या एक ऐसा समाज जो है वो बना है जिसमें लोगों ने खुद ब खुद ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना जो है वो कम कर दिया है। और बहुत से परिवार आपने ऐसे भी देखे और महसूस किए होंगे जो कि बिल्कुल ही जिन्होंने जाना ही बंद कर दिया है, मिलना ही बंद कर दिया है और बातचीत भी बंद कर दी है। और इसे समय की मार कहें या पता नहीं, हम लोगों की संवेदनाएं जो हैं, हम संवेदनशील कम होते जा रहे हैं या बिल्कुल ही शून्य होते जा रहे हैं, ये बहुत से सवाल हैं जो समाज में भी हैं, परिवार में भी हैं। और इनके हम उत्तर जब ढूंढते हैं तो कई बार हमें बहुत टटोलने पर, खंगालने पर भी हमें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि हम मिलना नहीं चाहते, उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। हमारे दिल के किसी न किसी कोने में अभी भी लगता है कि हमारी वहाँ रिश्तेदारी है, हमारी वहाँ पे दोस्ती है, हमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए। पर पता नहीं वो क्या चीज़ है हमारे अंदर जो हमें रोकती है कि नहीं, अगर वो नहीं आते तो हम भी क्यों जाएं, अगर वो बात नहीं करते। और आजकल तो फ़ोन एक ऐसी बड़ी ही पोर्टेबल सुविधा है हमारे पास कि अगर हम आ जा नहीं सकते तो हम फ़ोन पे बात करके कुशल क्षेम जो है वो पूछ सकते हैं, हालचाल जान सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक बहुत ही गहरी ये भावना घर कर जाती है कई बार कि फ़ोन भी नहीं करेंगे हम, अगर आना जाना नहीं है तो फ़ोन पे बातें कम होने लगती हैं, मिलना जुलना कम होने लगता है। और धीरे धीरे धीरे धीरे करके कुछ रिश्ते आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। और उसमें बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती या हमने बहुत कुछ जो है वो नहीं किया होता उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, बस थोड़ा सा हमने ध्यान देना बंद किया होता है। और फिर ध्यान कम देते देते वो समय इतना बढ़ता जाता है कि फिर वो रिश्ता जो है एक तरह से ख़त्म ही हो जाता है। फिर हमारी यादों में रह जाता है कि कोई बुआ थी, कोई नानी थी, कोई मासी थी या कोई दोस्त था, सहेली थी, जिनसे हम कभी बड़े अच्छे से मिलते थे, बड़े खुल के बातें करते थे, और अब ना तो हम मिलते हैं और ना ही बातें करते हैं। तो ये बात श्रोताओं आपके साथ इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी भी रिश्तेदारी में ऐसे कोई रिश्ते होंगे या आपके भी कोई होंगे जिनको हमने बहुत समय से, बहुत लंबे अरसे से नज़रअंदाज किया है, लेकिन मन के किसी कोने में हमें भी लगता है कि नहीं यार, वो समय बहुत अजीज़ था जब हम मिलते थे, बातें करते थे, अच्छे से समय स्पेंड करते थे। उस चीज़ को दोबारा वापस लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा भारी भरकम रकम नहीं खर्च करनी है या बहुत दूर नहीं जाना है, बहुत कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करना है। बस एक छोटी सी फ़ोन कॉल करके हमें उन बातों को दोहराना है कि वो समय अच्छा बीतता था, अच्छा समय था वो। और इस तरह से धीरे धीरे फिर से हमारा जो कनेक्शन है वो बन जाता है, वही रिश्ता फिर से उसी तरह से जो है वो बन जाता है। बस थोड़ी सी ज़रूरत होती है सोचने की कि हम सोचें, और अगर हम किसी रिश्ते को ख़त्म ही करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है, ना कोई दवा है, ना कोई इंजेक्शन है। लेकिन हाँ, अगर हम चाहते हैं कि वो रिश्ता बना रहे, उसी तरह से उसमें जो है प्यार सद्भावना बनी रहे, तो बस थोड़ा सा 2 मिनट आज निकालिए, 2 मिनट अगले हफ्ते निकालिए, इस तरह से 5-7 मिनट का समय निकाल करके हम उस रिश्ते को बचा सकते हैं या पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का जो है वो संदेश, आप कह सकते हैं दिल से निकली हुई बात। और आपके भी जीवन में कोई ऐसा रिश्ता, ऐसी सहेली, ऐसा दोस्त है तो उस रिश्ते को यूं ही आप ख़त्म मत होने दीजिए। उसे पुनर्जीवित करने का समय अगर आपको लगता है कि आ गया है तो ज़रूर जीवित कीजिए और उन्हीं पलों को, उन्हीं
खुशियों को आप दोबारा से जी सकते हैं उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आपने कभी वो खुशियाँ साझा की थी। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और अब कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। गीत है खट्टा मीठा फिल्म से के और साथियों की आवाज़ों में। इंजॉय कीजिए श्रोताओं ये प्यारा सा ट्रैक।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ आपका ये साथ जब भी हमारे साथ होता है समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि कब 9 बजे थे और कब 9 से घड़ी की सुइयां टिक टिक करते हुए सीधे 11 बजाने को बिल्कुल बेकाबू हैं। लेकिन हम भी इतनी जल्दी जाएंगे नहीं श्रोताओं, आपके साथ बातचीत का भी आनंद उठा रहे हैं साथ ही साथ मनोरंजन आपका कर रहे हैं। तो अब कार्यक्रम में मुझे लगता है कि कार्यक्रम का ये अंतिम ही गीत होगा लेकिन आपको सुनाएंगे जरूर, तो आइए लीजिए आनंद उठाइए कार्यक्रम के इस अंतिम गीत का।

श्रोतो, आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का हमारा सफ़र बस यहीं तक। आपसे इसी वादे के साथ विदा लेते हैं कि बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: देख पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: पता नहीं, उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं, मेरे ही होंगे इस घर में। और रहते ही कौन है?
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गेन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गेन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
2: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सागर। इस शो का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार और इस शो को आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया को। ऑर्गन इंडिया जो कि एक संस्था है जो बढ़ चढ़ कर जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, ताकि लोग जागरूक हो सके और लोगों को पता चल सके कि जीवन जो यकीनन एक उपहार है वो सबके लिए एक जैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए वो उपहार शाप में तब्दील हो जाता है, लेकिन उस शाप को वापस से उपहार बनाया जा सकता है। और इसी बात को विस्तार से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं ये शो जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, मिस्टर भवानी सिंह। 38 वर्ष इनकी आयु है, झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं और 2004 में इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। आइए जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में और एक छोटी सी विनती आप लोगों से करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं और जो किसी और का जीवन बचा सकती हैं। तो सबसे पहले भवानी जी आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद आपका।
2: सर मैं जानना चाहूंगा आपके उस टाइम फेज के बारे में जब आपके साथ ये सब हुआ, तो कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स क्या थे आपकी बॉडी के?
3: ये लगभग अप्रैल 2004 की बात है जब मैं नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर था, तो उस वक्त एक स्पोर्ट्स शूज पहने के कारण मेरे पैर के अंदर थोड़े से कॉर्न हुए थे और उनकी एक रिप्लेसमेंट सर्जरी के कारण जो पोस्ट ऑपरेटिव सिम्टम्स थे हाइपरटेंशन वो हुआ। बाद में एक महीने तक एनालिसिस किया कि हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, किडनी के रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह करवाए, तब पता चला कि जो एंटीबायोटिक मेरे को दी गई थी, पेन किलर्स जो मेरे को दिए गए थे पोस्ट ऑपरेटिव, उनके कारण किडनी फेल्योर हो गई। तो पोस्ट फेल्योर जयपुर के अंदर ही मेरा डायलिसिस हुआ और एक महीने तक डायलिसिस होने के बाद मेरे को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। तब किडनी ट्रांसप्लांट का इंडिया के नॉर्थ इंडिया में जो सबसे अच्छा सेंटर था वो गुजरात के अंदर अहमदाबाद के पास में मूलजी भाई पटेल यूरोलॉजी हॉस्पिटल था, वहाँ पर मेरे को शिफ्ट किया गया। एक महीने तक वहाँ पे फिर डायलिसिस हीमोडायलिसिस किया गया और जस्ट एक महीने बाद में मेरे फादर्स, मेरे जितने मेरे रिलेटिव थे जो किडनी डोनेट करने के इच्छुक थे, उनका क्रॉस मैच किया गया। तो सबसे अच्छा जो क्रॉस मैच मिला वो मेरे फादर का था, लगभग 55% के करीब क्रॉस मैच हुआ और फिर 9 जून 2004 को मेरा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो गया। पोस्ट ट्रांसप्लांट बिल्कुल नॉर्मल एकदम जो जीवन था, पहले प्रिकॉशन रहा 2 साल तक, अच्छा प्रिकॉशन रहा, मास्क लगा के रखना, बॉइल्ड वाटर पीना, बाहर नहीं गया मैं कहीं भी, लगभग घर के अंदर ही रहा और काफ़ी थोड़े वो प्रिकॉशंस थे जो रखने पड़े। उसके बाद में डेली रूटीन लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो गया, जॉब लग गई, हाँ पोस्ट ऑपरेटिव मेरी शादी हुई, अभी 2 बच्चे हैं और अभी मैं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ और आज तक मैं दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ पोस्ट ट्रांसप्लांट, बिल्कुल फिट हूँ, कंटिन्यू मैं अपनी मेडिसिंस ले रहा हूँ।
2: सर इन सब बातों पर आएंगे लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार से आपके उस टाइम को अच्छे से जानना चाहता हूँ जब आपके साथ ये सब हो रहा था। लाइक जैसा कि आपने कहा स्पोर्ट्स शूज पहनने के कारण आपके पैर में दिक्कत हो रही थी, तो जब डॉक्टर ने आपको बताया कि किडनी खराब हो गई है तो उस टाइम पर क्या गुजरी, पूरे परिवार में कैसा माहौल था, आपके क्या विचार थे अगर आप याद कर पाए क्योंकि पुरानी बात है?
3: हाँ जी ये मैं रिकॉल कर सकता हूँ क्योंकि जिस वक्त पहली बार जब ये रिपोर्टिंग हुई किडनी की और उसमें पता चला कि क्रिएटिनिन जो था वो 10 के आसपास आ रहा था, तो जब उसका रीजन पूछा गया तो डॉक्टर्स ने मेरे को नहीं बताया लेकिन फादर को साइड में लगा जाके बोला कि किडनी फेल्योर हो गई है तो अब इनको डायलिसिस पे लेना पड़ेगा। तो एक शॉकिंग मोमेंट था फैमिली के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि आसपास ऐसा कोई केस था नहीं कि जिसकी किडनी फेल हो गई और हमने सुना हो। तो मेरे हिसाब से जो मेरी 5,000 या 10,000 की आबादी वाला गांव था उसमें शायद मेरा पहला था, तो बहुत शॉकिंग थी ये। और फिर 10-20 दिन लगे नॉर्मल होने में लेकिन फिर जो भगवान ने कहा उसके हिसाब से ढलना पड़ा और अंततः डायलिसिस भी लिया गया मेरे को।
2: जी जी, तो किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी और अब डायलिसिस तक पहुंच गए। दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जो आगे का सफर है वो आपको बताएंगे। आप सभी लोगों से वापस एक बार विनती करूंगा, हमारे साथ बने रहिए और इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें अगर किसी के समझ में आ गई तो बहुत सारे लोगों को जो है जीवन दान मिल सकता है, उनका जीवन एक उपहार वापस से बन सकता है। पर अभी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: चलिए दोस्तों अपने उसी बातों के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। ये शो जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार, जिसको आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया को। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर भवानी सिंह, जो किडनी रेसिपिएंट है। 2004 में इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। इनकी जिंदगी का सफर हम जान रहे थे। अभी तक इन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि किडनी खराब हो गई है, डायलिसिस पर गए। और उस टाइम पर माहौल ऐसा था, क्योंकि पूरे गांव में, पूरे उस कस्बे में जो इनका इलाका था, वहां पर किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो उसके बाद सर क्या सोचा, मतलब किस तरह के विचार आपके चलते थे? लाइक कि आपको पता था कि कोई किडनी दे देगा, उम्मीद थी, या फिर ऐसा था कि नहीं बस हो गया?
2: उस वक्त ट्रांसप्लांट का तो ख्याल ही नहीं था। पहले तो किडनी फेल हो गई थी, तो पहले तो ये था कि ये

0: इसको क्या करना आगे। तो सबसे पहले जब डॉक्टर से मिले तो उन्होंने डायलिसिस का ही उन्होंने सजेस्ट किया कि डायलिसिस कराओ अभी तो, और फ्यूचर के अंदर जब भी आपको डोनर मिले और क्रॉस मैच मिल जाए तो फिर ट्रांसप्लांट की हम सोच सकते हैं। लेकिन फिर रिव्यू के लिए मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली गया तो उन्होंने बोला कि अभी यंग एज है तो आप डायलिसिस ज़्यादा ना करवा के ट्रांसप्लांट पे शिफ्ट हो जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर उनकी एडवाइस के हिसाब से फिर मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरी ग्रैंड मदर ने क्रॉस मैच करवाए, और जो क्रॉस मैच थे जो सबसे बढ़िया मिले वो मेरे फादर के थे। और डोनेशन के लिए तो एक मेरी सिस्टर्स भी जो अनमेरिड थी वो भी तैयार थी, लेकिन फादर ने फिर प्रेफर किया कि मैं ही दूंगा, कि वो तैयार थे इस चीज़ के लिए। घबरा मतलब इसे कोई घबराहट नहीं थी कि मेरी ये किडनी मैं अपने बच्चे को दूंगा तो फिर मेरे शरीर में क्या बीतेगी, वो उनको बिल्कुल मेरे फादर को चिंता नहीं थी, वो बिल्कुल इजीली तैयार हो गए थे देने के लिए
1: जी। और खास तौर पर बच्चा जिसकी उम्र महज 19 वर्ष हो, तो 19 साल के आप उस टाइम थे, क्या कर रहे थे उस टाइम, आप कौन सी क्लास में थे, इस कॉलेज में थे, क्या थे?
0: जी मैं उस वक्त अलवर के अंदर जो राजस्थान के अंदर है, NCR में आता है, दिल्ली NCR में, उस वक्त मैं वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और वहीं पे फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी कर रहा था।
1: तो पढ़ाई प्रभावित हो गई थी। अब यहाँ पर बात आ गई थी जीवन के ऊपर कि जीवन कैसे बचे। तो जैसा कि आपने कहा कि इतने सारे लोग आ गए थे आपके लिए अपने जो है ऑर्गन्स डोनेट करने, अपनी किडनी डोनेट करने, पर सवाल सर यहाँ पर ये है कि लोग आ जाते हैं लेकिन सबका मैच नहीं हो पाता। जैसा कि आपने कहा कि फादर साहब का मैच हुआ आपके, ठीक है, तो अब क्या, किस तरीके से अब आप उस चीज को देखते हैं? क्योंकि ऑर्गन डोनेशन जो आज भी मेरे हिसाब से एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लोग डर जाते हैं। जबकि एक इंसान अपने ऑर्गन्स अगर डोनेट करे, जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है, जो अभी ब्रेन डेड नहीं हुआ है, तो उससे काफी लोगों की जिंदगी जो है बचाई जा सकती है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि ऑर्गन्स डोनेट करना कितना जरूरी है, और जस्ट इन केस आपके परिवार में से अगर किसी का भी आपके साथ मैच ना करता क्रॉस, तो आपकी क्या कंडीशन होती, कहाँ होते, आप कैसे देखते हैं उस चीज को?
0: पहले तो मैं यूं बता दूं कि लगभग पर ईयर 5 से 6 लाख जो पीपल है उनकी किडनी डैमेज होती है और डायलिसिस पे आते हैं। मतलब वो आदमी है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की या एक किडनी या एक ऑर्गन की जरूरत है जीने के लिए, लेकिन महज उनका मात्र 8% मान के चले अब 35-37,000 का ट्रांसप्लांट हो पाता है। तो आप ये मानिए कि जो बाकी के जो 92% या 90% पीपल है वो डायलिसिस पे रहते हैं। डायलिसिस एक जटिल प्रक्रिया है, उसके अंदर आपका जो ब्लड है एक मशीन के थ्रू हर 3 दिन के बाद में साफ किया जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन के काफी चांस होते हैं और उसमें सर्वाइवल रेट भी बहुत कम होती है। तो डायलिसिस में आप लाइफ जी सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस है, और आपको हर 3rd दिन डायलिसिस करवाना होता है। एक मशीन के थ्रू आपका ब्लड साफ होगा, वापस पूरी प्रोसेस है, वापस आपके ब्लड में के बॉडी में वो डाल दिया जाता है। तो एक पेनफुल प्रोसेस भी है और एक बहुत थ्रेटनिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या है कि ट्रांसप्लांट जो है वो बेटर ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका परिवार का कोई सदस्य या आपके जो मिलने वाले हैं रिलेटिव्स हैं, जो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके ऑथराइजेशन के अधीन हो, क्योंकि काफी जगह अंकों का व्यापार भी किया जाता है। तो उस चीज से परे जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं या आपके मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, आपकी दादी माँ हैं, आपके दादाजी हैं या आपके नाना जी या नानी जी, बिल्कुल जो ब्लड रिलेटिव्स हैं वही अंगदान कर सकते हैं। जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के उस हिसाब से तो अंगदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम मतलब जो किडनी होती है, जो जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि आपके शरीर में भले ही 2 किडनी है लेकिन बॉडी के अंदर जो एक्टिव रहती है 60% वो एक किडनी रहती है, दूसरी तो बिल्कुल स्टैंड बाय पे रहती है, जो सारा वर्कलोड लेती है वो एक ही किडनी लेती है। अगर आप एक डोनेट भी कर देते हो किसी दूसरे को तो आपके शरीर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, डोनर इजीली लाइफ जीते हैं। तो अगर आपने एक अपना अंग या किडनी दूसरे को दे दिया तो 2 जने सर्वाइव कर रहे हैं ना उन्हीं चीजों से। तो एक जागरूकता बिल्कुल एक सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए कि अंगदान से डोनर के कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेटर लाइफ जीता है वैसे पहले की तरह, कोई प्रिकॉशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है लाइफ लॉन्ग। एक कोई ज्यादा से ज्यादा एक लेप्रोस्कोपी के 3 टांके आते हैं तो 3 दिन बाद में एंटीबायोटिक के बाद में हील हो जाते हैं, और उसके बाद में ना कोई फॉलोअप है डोनर का, ना उसके बाद में कोई उसकी मेडिसिन है, ना कभी उनके कोई ऐसी कंपलसरी वो मेडिकल रिव्यू है कि उनको हर महीने में 6 महीने में साल भर में चेक करवाना है। हाँ, रेसिपिएंट जरूर प्रिकॉशनरी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेता है लेकिन डोनर के लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो इसलिए अंगदान बहुत जरूरी है ताकि एक नया जीवन मिल सके।
1: जी जी। अब यहाँ पर सर दूसरा सवाल मेरा कि अगर आपको उस टाइम पर वो किडनी ना मिलती, किसी का भी मैच ना करता, तो आप कैसे देखते हैं जीवन कैसा होता या नहीं होता, या क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने होते?
0: ये सोच के तो बड़ा थ्रेटफुल लगता है, पेनफुल भी लगता है कि शायद मैं डायलिसिस पे होता, नहीं मिलती तो, क्योंकि ओबियसली अगर रिलेटिव्स की या मदर फादर की अगर क्रॉसमैच नहीं होता तो शायद मैं डायलिसिस पे होता, और डायलिसिस पे कितना दिन सर्वाइव करता ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं आज जैसी लाइफ जी पा रहा हूँ वैसी जी पाता।
1: जी जी जी, इसी के साथ दोस्तों एक और बहुत छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद इस सफर को आगे लेकर चलेंगे, और अब हम जानेंगे ट्रांसप्लांट के बाद के जीवन के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में, ताकि आपको पता चले कि जीवन से बड़ा कोई उपहार है नहीं। तो ये तमाम बातें हम करेंगे भवानी सिंह जी के साथ, पर अभी आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: चलेंगे दोस्तों अपनी बातों के सफरनामे को आगे लेकर चलेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन एक अनमोल उपहार एक खास प्रोग्राम है जिसको इनिशिएट किया है ऑर्गन इंडिया ने। उसमें हमारे साथ मौजूद है आज मिस्टर भवानी सिंह, एक किडनी रेसिपिएंट है। मैं हूँ सागर। आइए जानते हैं भवानी सिंह जी से कि उनके जीवन में जब वो फेज आया, जब ट्रांसप्लांट उनका हुआ, उस टाइम पर कैसा वो सब रहा। तो सर बताइए कि कैसे वो सब चीजें मैनेज हो पाई, लाइक कौन कौन आपके लिए सामने आए एंड क्या वो प्रोसीजर रहा पूरा। आप तो जाहिर सी बात है डायलिसिस पर थे।
2: डायलिसिस के दौरान जब ट्रांसप्लांट होता है तो जैसा मैंने बताया कि जो एमपीएस हॉस्पिटल है किडनी का नडियाद गुजरात के अंदर, वो अच्छा नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। तो अच्छा होने के साथ साथ वहाँ पे पैसे भी, मतलब एक पैसे की काफी रिक्वायरमेंट होती है, तो फाइनेंशियली भी आपको मजबूत होना पड़ता है। क्योंकि मेरे फादर वेटनरी के अंदर एक बीए थे, कंपाउंड थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे काफी पैसा खर्च हुआ। लेकिन मेरी अच्छी किस्मत थी कि मेरे जो मामा जी थे उन्होंने काफी हेल्प की, मेरे जो अदर रिलेटिव थे फूफा जी वगैरह वो भी आ गए, पूरे परिवार के लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी वहाँ पे आए। और लगभग गुजरात के अंदर इतनी दूर से 700-800 किलोमीटर से चल के वहाँ पे आना बड़ी बात थी। तो मेरे को एक मॉरल सपोर्ट मिला कि अपमान अकेले नहीं है, परिवार के साथ जो रिलेटिव भी आ रहे हैं, फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो बहुत लकी हूँ मैं कि वो वहाँ पे मौजूद थे। फाइनेंशियली भी रूप से भी सपोर्ट कर रहे थे और मॉरली भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, उससे मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और मैं मजबूत रहा खुद भी। और पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद में ऐसी बात है कि जैसे ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद में जैसे 10 दिन तक तो वो आईसीयू में रखते हैं, उसके बाद में मैं 3 महीने तक वहीं रहा नडियाद के अंदर। नडियाद अहमदाबाद में छोटा सा टाउन है लेकिन वो अच्छा हॉस्पिटल है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए और सबसे ज्यादा सक्सेस रेट भी वहीं की है इंडिया के अंदर अभी। तो वहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, डॉक्टर महेश देसाई ने मेरा ट्रांसप्लांट किया जो गोल्ड मेडलिस्ट है और अभी यूके रहते हैं। और उसके बाद में पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद में हर 3 दिन से मेरे को फॉलोअप हुआ। 3 महीने तक उन्होंने हॉस्पिटल के पास में मेरे को रखा, रूम लेके रहा वहाँ पे, और बिल्कुल प्रिकॉशन नहीं रहा क्योंकि सबसे ज्यादा रिजेक्शन के चांस आपके शरीर के अंदर, अगर कोई दूसरा ऑर्गन अपन डालते हैं तो हमारा जो शरीर है उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए आपको बहुत हाई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है ताकि वो किडनी आपके शरीर में मेंटेन रहे और आपका शरीर उसको रिजेक्ट नहीं करे। तो उसमें एक नुकसान ये है कि आपकी इम्यूनिटी को लो कर दिया जाता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी एकदम जीरो कर देंगे तो आपको दूसरे खांसी बुखार जुखाम है वो आसानी से होने के चांस रहते हैं। इसी कारण पोस्ट ट्रांसप्लांट मेरे रूम में किसी को भी आना मना कर दिया गया, किसी के जुखाम खांसी है तो उसको दूर रखा गया। मेरा अलग रूम था, खाना पीना भी बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बॉइल्ड करके मेरे को दिया जाता था। किसी घर पारिवारिक सदस्य की अगर किसी तरह की कोई वायरल है तो उसको मेरे से दूर कर दिया जाता था ताकि जब तक हाई डोज इम्यूनोसप्रेस की चले, रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाने वाली दवाइयों की चले, तब तक मैं सेफ रहूं। और दिन में जो खाना है वो है जो नेफ्रोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया उस हिसाब से मैंने मेडिसिन और दवाइयों को बरकरार रखा
1: जी। अब जानेंगे यहाँ तक आपका ट्रांसप्लांट हो गया, आपने बताया कि उसके बाद का जीवन कैसा रहा, आप अस्पताल के पास रहे, 3 महीने तक फॉलोअप चला और वो तमाम जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया गया। सबसे पहले आपके पिताजी के बारे में जानेंगे, जब उन्होंने किडनी आपको डोनेट कर दी उसके बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया और कैसा उनका जीवन रहा।
2: किडनी डोनेट करने के बाद में जैसे साथ में ट्रांसप्लांट जब होता है तो दोनों साथ ही रहते हैं, डोनर और रिसिपिएंट। मैं जरूर 10 दिन तक रहा आईसीयू में लेकिन उनको 3 दिन बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। और 3 दिन बाद में डिस्चार्ज करने के बाद में वो रेगुलर फॉलोअप पे रहे, 15 दिन बाद में फिर उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। उसके बाद में मेरे साथ 3 महीने तक वो यहीं रहे, चूंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट में थे तो अपनी छुट्टियां लेके रहे। और वहाँ जाने के बाद में जब हम यहाँ से चले गए राजस्थान, गुजरात से जब राजस्थान वापस चले गए तो फिर उन्होंने जाते ही अगले दिन से अपनी जॉब पे वापस जाना स्टार्ट कर दिया। तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी किसी चीज़ की और उनके जो डिपार्टमेंट था मेडिकल हेल्थ उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिला और उनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की। तो और वो खुद भी बहुत स्ट्रांग पर्सन थे, हालांकि फिर बाद में पोस्ट ऑपरेशन के 15 से 20 साल बाद में जस्ट 2-3 साल पहले उनके लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ और आज वो इस दुनिया में नहीं है।
1: जी, लेकिन वो किडनी की वजह से जो डोनेट की उन्होंने उससे कोई दिक्कत नहीं
2: हुआ? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो लंग कैंसर तो एक अलग वो अलग चीज है, वो उसका तो अननोन कारण था
1: जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके जीवन के बारे में, ट्रांसप्लांट के बाद आपका जीवन कैसा चल रहा है अभी तक, एंड आपने बताया कि शायद आपकी शादी भी ट्रांसप्लांट के बाद ही हुई, तो उस पूरी जर्नी के बारे में बताइए, क्या क्या कठिनाइयां आपके सामने आई, कैसा अभी तक का जीवन रहा है।
2: 2004 में ट्रांसप्लांट के बाद में जब मैं 3 महीने के फॉलोअप के बाद में अपने वहाँ आया, गांव आया, तो शुरुआत में किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था क्योंकि गांव कोई मिलने वाला आता तो हो सकता है उसके वायरल हो और मेरे हो जाए। तो बिल्कुल सेपरेट रखा गया, ना किसी बर्थडे पार्टी में, ना किसी शादी के अंदर, ना किसी प्रोग्राम में, कहीं नहीं जाता था। जो बॉइल्ड खाना है, बॉइल्ड वाटर है, उसको कंटिन्यू किया। फिर धीरे धीरे फिर मेरी जो स्टडी थी वो बिल्कुल ड्रॉप आउट हो रही थी, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू करने का फैसला किया। और एक साल बाद में मैंने बैक के रूप में, वो तो बैक तो लग गई थी 2004 वाली, तो उसके बाद में मैंने स्टडी को वापस स्टार्ट किया। 2007 में मैंने नर्सिंग कंप्लीट करी। नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में 2007 के अंदर नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड हुआ। उसी दौरान मेरी शादी हुई और उसके बाद में शादी होने के जस्ट एक साल बाद में मेरा एक लड़का हुआ और अभी एक लड़की भी है, गुड़िया भी है जो 8 साल की है, लड़का अभी 12 साल का है। और अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और एडिशनल चार्ज भी है मेरे पास में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का, तो मैं दोनों चार्ज देख रहा हूँ।
1: कुल मिलाकर जो एक नॉर्मल जीवन होता है, मतलब वैसा जीवन आपका चल रहा है, एक सुखद परिवार है और अच्छे से आपका जीवन जो चल रहा है, अब जाना चाहेंगी स्पोर्ट्स, क्योंकि आप खेलते हैं अभी, तो कोई कठिनाई आती है स्पोर्ट्स खेलने में या कैसा लगता है या क्या वो प्रेरणा है आपकी?
2: ये तो एक माइंडसेट की बात है। हम सोचते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी हो जाएगी या फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट इतना हैवी नहीं करना चाहिए कोई भी एक्टिविटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में बिल्कुल नॉर्मल एकदम एग्जिस्टेंस है तो आप बिल्कुल एकदम सही रहेंगे। पहले मैं ट्रांसप्लांट से पहले क्रिकेट वगैरह खेला करता था, लेकिन इंजरी की वजह से मैंने छोड़ दिया कि हो सकता है बॉल ऐसी जगह लग जाए जहाँ अपना ट्रांसप्लांट हुआ, तो हैवी गेम्स को मैंने अवॉइड किया। लेकिन जो लाइटर गेम थे जिनके अंदर अपने को डायरेक्ट इंजरी नहीं हो, बैडमिंटन है, चेस है, पेंटांग है, लॉन बॉल है, इनके अंदर पार्टिसिपेशन चालू किया और धीरे धीरे धीरे धीरे आज मैं अभी इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके लिए फाइनल हुआ हूँ। तो जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के अंदर जो 2023 के अंदर

0: अभी जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हो रहे हैं उसमें मैं इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ।
1: कौन सा गेम है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे
0: हैं? मैं वैसे तो ग्रुप है गेम्स के, तीन गेम्स है, एक है लॉन बॉल, एक है पेंडांग और एक है डार्ट।
1: आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप जाएं और परचम हमारा लहरा कर आए। सर यहाँ पर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, मतलब इतना सब हुआ अभी तक, आप ट्रांसप्लांट के बाद 19 साल का सफर आप तय कर चुके हैं, एक चीज बताइए, मानते हैं आप कि जीवन यकीनन एक अनमोल उपहार है?
0: बिल्कुल, जीवन तो एक अनमोल उपहार है, क्योंकि जिस वक्त मैं बिल मौत के कगार पे खड़ा था उस वक्त कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और मेरे को लग रहा था कि शायद कल का मैं सूरज देख पाऊं या नहीं पाऊं, लेकिन जब मेरे एक दूसरे का अंग मेरे शरीर में आया और आज मैं जी रहा हूं, तो बहुत बड़ी बात है कि पूरे जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि उसको मैं देख पा रहा हूं, जीवन को अच्छे से जी पा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से सबको अंगदान के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डोनर है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ उनके परिवार का एक सदस्य, उनका एक रिश्तेदार एक नई जिंदगी प्राप्त कर सकता है, और जो जीवन वो जी रहे हैं दाता वो एक रिसिपिएंट भी बढ़िया और शानदार जीवन जी सकता है।
1: जीवन यकीनन एक अनमोल उपहार है। तो भवानी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, जबकि एक दर्द भरा फेज था आपका, उसने आपको बहुत अच्छे से विस्तार से बताया, लोगों को बताया। तो दोस्तों आपने सुना भवानी सिंह जी के विचार, आपने सुने 19 साल का एक लड़का जिनको दिक्कत होती है और किडनी पता चलता है दोनों खराब हो गई है, डायलिसिस फिर जाते हैं और जीवन एक शाप बन चुका होता है, जो कि हमने अपने शो की स्टार्टिंग में कहा था। उसके बाद इनके पिताजी उठकर आते हैं, ये लकी रहे कि इनके वो ब्लड ग्रुप मैच कर गए, जो भी उनके क्राइटेरियाज होते हैं वो सब मैच कर गए, लेकिन अगर वो नहीं करते तो शायद बहुत ज्यादा कठिनाई हो सकती थी, शायद अभी तक भी डायलिसिस पर हो सकते थे। तो उतनी जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन ये लकी है कि इसके बाद उनके पिताजी का वो मैच कर गया और इन्हें किडनी मिल गई और इनका जो जीवन अनमोल उपहार है, जो शाप बना था वापस से वो एक अनमोल उपहार बना। आप सभी लोगों से यही एक गुजारिश मैं करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ कर अंगदान करिए, क्योंकि देखिए पहले तो लोग करते ही नहीं है, उसके बाद लोग करेंगे तो वहां पर जाकर पता चलेगा किसका मैच कर रहा है किसका नहीं कर रहा है एंड कौन क्वालिफाई कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा है, तो ये जो रेशो है बहुत कम रह जाता है, बहुत सारे फिल्टर्स लग चुके होते हैं। कोई आखिरी पैगाम जो आप लोगों को देना चाहते हैं जिस टाइम आपको सुन रहे हैं?
0: मैं जितने भी श्रोतागण ये चैनल सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जो किडनी फेल्योर्स के जो कारण है वो हमारी अज्ञानता भी है, जैसे हम बाजार में अपने को पेन हुआ और पेन किलर्स ले आए बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, उन जो पेन किलर्स अपन डायरेक्ट मेडिसिन से खरीद के ले आते हैं और ले लेते हैं वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा कारण है कि वो जो पेन किलर्स हैं उनका लेने से किडनी फेल हो रही है। दूसरी बात, अगर आपको हाइपरटेंशन के कुछ सिम्टम्स लगे, भारी सर दर्द हो रहा है, तो अपनी मर्जी से पेन किलर्स ना लें, प्रॉपर उसकी जाँच करवाएं, और जो डायबिटिक हैं, जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं वो कंटिन्यू अपना फॉलोअप करवाएं, क्योंकि किडनी फेल्योर का सबसे बड़ा कारण भी डायबिटीज है, तो मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, अगर आपका रिश्तेदार में या आपके परिवार में जनों में किसी किडनी फेल्योर या आरसीएफ से पीड़ित है, तो आप उसको अपना अंग देके उसका जीवन बचा सकते हैं। किडनी देने से आपके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी फैमिली एक सिक्योर हो जाएगी, और जो नॉर्मल जीवन एक व्यक्ति जीना चाहता है, उम्मीद करता है, वो आपकी तरफ से एक गिफ्ट होगा उनको कि आपने किसी एक आदमी की जान बचाई, और इससे बड़ा उपहार तो कोई है ही नहीं। भगवान ने जो आपको दी है शरीर, आपने एक अन्य व्यक्ति को एक तरह से नया जीवन दान दिया है और उसका एक नया जन्म है जो आपके कारण हुआ है, तो अंगदान बिल्कुल बढ़ चढ़ कर करना चाहिए, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, ना आपके शरीर में किसी तरह की कोई क्षति होती है या काम के अंदर कोई दिक्कत होती है। जैसा आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, जैसा नॉर्मल आप ऑफिस जा रहे हैं, जैसा नॉर्मल आप अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, तो ये जो कोई मिथ्या है ऐसी कि कमजोरी आएगी या फिर मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों आशा करता हूँ जो मूल्य आप लोगों को देने के लिए हमने ये शो स्टार्ट किया था वो हम दे पाए हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भवानी सिंह जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर कि सर आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। जाते हुए वापस से एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जीवन यकीनन एक अनमोल उपहार है, लेकिन सबके लिए बराबर नहीं होता, कईयों के लिए बीच में दिक्कत हो जाती है, तो कोशिश करिए किसी और का जीवन जो आप वापस से एक अनमोल उपहार बना सके। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऑर्गन इंडिया की पहल जीवन एक अनमोल उपहार आप सुन रहे थे, मेरा नाम है सागर, फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहे की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल ये विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और बी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजिस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुख

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: पता नहीं उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा?
7: मेरा ही रहेगा लगता है, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन है।
8: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टोपी वाला।

101.2 MHz पर ए है तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्शन तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दें कार्यक्रम दा अगला गीत।

कानवे दशमलव 2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा

यह तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इं बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुण अपने।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: पता नहीं उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और इंतजार भूना हा चूर्वज ने रहा था, इंतजार खत्म हुआ, इवन की चूर्वज गए या कमेंट बच गया श्रोताओं। और कार्यक्रम लेकर आऊँ सचिन कपूर, बिल्कुल हाजिर खातुंद है रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। तो ठीक ठाक राजीव बाजी, उम्मीद कर रहा हूँ ठीक ठाक बुने और राजीव बाजी बुने इन श्रोताओं। तो बहुत सारी जानकारी ना सुले और बहुत सारे इन श्रोता जी कि तू पता कि जुड़ते हैं कनेक्ट बुनते ना सोगे तो है सब श्रोता भी कि ऐसो कनेक्ट बुझ सकते हैं। इवन कि आजकल तो फेसबुक रहे कमेंट रहे माध्यम तो भी कि ऐसो फरमाइश है इच्छुक कर दिन तो सब श्रोता जरूर ऐसु होगी कि ऐसो कनेक्ट बुझ सकते हैं श्रोताओं। 7081709 पर कॉल करे करें नंबर आप मौके फिर आऊँ शेयर करना चाहूँ हाँ 7081809 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की ऐसा हो नहीं सकते हैं श्रोताओं, अपने इस गादे कार्यक्रम में जुड़ी सकते हैं श्रोताओं। बहरहाल बहुत सारी जानकारी आगाज कार्यक्रम रहा, प्यारे दे गीत होगी सब कुछ बुना श्रोताओं और सब कुछ बहुत बेहतरीन बुना है ना। तो चलिए जी कार्यक्रम जो है हगो बढ़ंदे हैं श्रोताओं और कार्यक्रम मंच लेकर चलते हैं। तू सभी श्रोता जो हाँ बिल्कुल इस खास जानकारी रही और हेरा श्रोताओं जानकारी रहा सिलसिला की असो जरूर चलना चिंदा और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जानकारी में है ना। इंसान की इस श्रोताओं से अपडेट रहता है, अप टू डेट रहता, अपडेट रहता है तो घंट गल बनते जुड़ना जानकारी सोगी भी। तो चलिए जी हिमाचल विधानसभा व मानसून सत्र क्या बनता कि कहने के रही बुझे अच्छा क्या चंद दिन तो है कहो कि बरसाला तो बरसाला ही बुना श्रोता है ना। तो बिल्कुल हिमाचल विधानसभा र मानसून सत्र के श्रोताओं सो 21 अगस्त तो शुरू बुझ सकता हा। राज्य सरकार इन्या 23 सितंबर तक किया सो बलू कर दे राज्य सरकार की भाई अगर 21 जो चल रहा था 23 सितंबर तक किया सो राज्य सरकार की सो चलाना चाहती हा श्रोतो है ना। विधानसभा और लोक भवन रह सो की चर्चा थो बाद ठेरी नोटिफिकेशन जल्द किया सो भुज गाने श्रोतो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू किया सो लंबा मानसून सत्र रखने की इच्छा किया सो जतन दे हिन सोचंद ने इन दे जो मुख्यमंत्री साहब ने सोचंद है इनकी मानसून किया जो ये मानसून सत्र के थोड़ा करे लंबा गया सो जरूर चला है ना जी। इस मानसून सत्र में विधानसभा रे उपाध्यक्ष व खाली पद जो भी किया सो भरी सकते उम्मीद है कि भरेगा ना ये पद है ना। और शतों चीफ री नई नियुक्ति भी किया सो सरकार करी सकते हाँ। ये मानसून सत्र कुछ खास रहने वाला है कजो कि राज्य सरकार चाव कर दिया कि 23 सितंबर तक चल रहा है ना। और इंदे जो मुख्यमंत्री साहब ने सुखविंदर सिंह सुखू जी सोचा उन कि लंबा मानसून सत्र गया सो रखने की तैयारी इच्छा हा तभी वाजे री इच्छा था भाई दिन क्या होंदा क्या ना होंदा है ना। फिलहाल इसी प्रकार हो गया अन्य जानकारी खास तुस हो गया सु शेयर कर दे रहे हैं धर्मशाला रहा मौसम रे बारे दसी श्रोताओं। तो आज पूरे धड़े गया सो मतलब बरखा रे हा ऐसी भी न रही इतनी भी न रही बिचा चौकी जरूर है लेकिन अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2 बजे रहा सो समय थो डर 2:45 2:00 2:00 बजे रहा सो समय रू रहा जड़ी कोई आधा घंटा गया सो काफ़ी ज़्यादा बरसात गया सो धर्मशाला में तेज तरार बरखा गया सो हेरने जो मोड़े हा श्रोताओं। तो इस प्रकार हो के बने रहे तो सब ये खास जानकारी तो वेड़ी गुंजन वेस पेजा मंच भी मूल दे रहनी हिन और सोगी सोगी वेडियो जरिए तो पूरा कार्यक्रम 5 बजे तक तो आनंद ले सकते हैं इस कार्य क्रम रहा 91.2 FM जो तो है ट्यून करा अपने वीडियो सेट में या फिर तो अगर वीडियो नहीं था एंड्रॉयड फोन था बिल्कुल प्ले स्टोर में अगर और गुंजन इंडिया रेडियो लिखा अपने गादे कार्यक्रम रहा आनंद जरूर लिया खास जानकारी सोगे कुछ प्यारे प्यारे इंदे श्रोता सोगे बने रहा तो सब आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रे और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता आंसू होगी बन रहे बंदे ना आंसू होगी जुड़ रहे बंदे इन श्रोताओं। आइया लेके चलते तू सभी हो इस गीत तरीके नारी

0: चलिए शो तो कार्यक्रम ये चल रहे रहा और जानकारी रहा पिटारा भी खोल दे रहे हैं। बहुत प्यारे दे गीत ये सब भी होनु शो तो और कमल ने रही इस गीता जो कि ऐसा आवाज़ दे तो रहा शो तो और प्यारे दे गीत तुंदे वीडियो सेट में किया सो ब्रॉडकास्ट हुआ। हाँ चलिए जानकारी रहा पिटारा की सो धीरे धीरे फिर खोल दे चल देन जो कि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट बुन दी हूँ हमेशा बनता अप टू डेट की असो असो रहने रहा मौका मुड़े गंदा है ना भूना भी चिंदा हा शो तो अप टू डेट इंसान जो हिमाचल प्रदेश की जनता जो अब है सो हरे रंग री नोई इलेक्ट्रिकल बस समा सफ़र करने का सुनहरा मौका गया सो मुलना हा और ये मौका गया सो प्रदेश व मुख्यमंत्री दिच्छू कर दे हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू दिच्छू कर दे हैं शो प्रदेश मुख्यमंत्री किया प्रदेश व मुख्यमंत्री के सो इन्या बस जो किया हवी झंडी श्रोतों दसी करी जनता वास्ते की सो समर्पित करी दी आज है ना और तटीय निगम री बस समा किराया डिजिटल भुगतान करने वास्ते की सो बस समा ट्रैवल कार्ड शुरू किया सो भी करी दिता है शो तो इस कार्ड थो कि सो आम यात्री जो 5% और जो इनके स्याण हैं जो वरिष्ठ नागरिक अह बनते हैं जो इनके स्याण हैं तीनों 15% तक री छूट की सो मोलने हा शो तो इस तो प्रदेश व विभिन्न क्षेत्र में बस सारी कमी दूर करने और यात्री जो बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने रे किया सो एक मुहिम हा जो तेज बुचू कर दे हा सो तो निगम मा 297 नौ इलेक्ट्रिकल बस सकिया सो खरीदी ली हिन सो तो इति में से 240 बस सकें सो निगम रे निगम वाले पूजेगी हिन जबकि शेष बचुरी बस सकें सो आधे सफर मंच हिन और जल्द हिमाचल किया सो तिन्या पूजेगाना हा तो इस प्रकार होगी जानकारी रह सिलसिला चली रहना है। फिलहाल इन श्रोतागण भी ऐसा होगी कनेक्ट बच गया है। नमस्ते जी।
1: नमस्कार सचिन जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: और क्या हाल चाल?
0: बहुत बढ़िया जी। तो है बल्ले तुम देखे हाल चाल ना?
1: हाल चाल ठीक है बरखा देव रे गप्पा गप्पा मार कर दे।
0: हाँ जी हाँ जी बरखा तो काफी लग रही है जी।

0: अच्छा बरसाले अजकल एक कॉन्सेप्ट बड़ा रहिंदा ना जी कपड़े के करे हुकान, ये बड़ा मतलब मेजर प्रॉब्लम रहिंदे हर गृहिणी रे।
1: हाँ जी हाँ जी, बस सब नियम होते प्रॉब्लम कपड़े नहीं हिंदे आजकल।
0: सब भी मट्टी प्रॉब्लम है बिल्कुल।
1: हाँ जी
0: अच्छा
1: हाँ जी,
0: पहले चलो क्या बंदा तो कि चोल बाल देती है ना, था मतलब कोई कोई कपड़ा जी पाई देती है ना उड़ी जी हाँ किचन अंदर ही साइडा साइडा
1: हाँ जी
0: ये इंदे हैल बंदे थी था मतलब तड़ी किल लाइक रिया सुफसाई दी ने। तो चलो सेक
1: हाँ जी
0: भी लगदा रहिंदा तो पुराने कपड़े जी पुराने घर घुर रहे जो कपड़े बंदे थी है तो ये
1: हाँ
0: सेक भी
1: जी
0: लगदा रहिंदा था और सो हुकंदे भी रहिंदे थी है धीरे धीरे।
1: हाँ जी हाँ जी, अरे
0: अबे मुश्किल है कपड़े हुकाना भी ठीक पल्लू गर्दन तो है।
1: बड़ी मुश्किल है। हाँ
0: जी।
1: जी
0: ता
1: हाँ
0: टिल्लू है
1: जी,
0: आप जो मतलब बरखा लग रही और धुंध प्योरे कि ना प्योरी जी
1: बूंद बड़ी बड़ी पेवरी, बूंद
0: धुंध प्योरे तो
1: पेवरी, बरखा लगुरी। हाँ
0: असली बरसाले रे मजा तो है लियो गर्दन।
1: जी हाँ
0: पर
1: जी,
0: बरसाले बंदा ना थोड़ा मतलब डर ही लगता ना कि घर का ला ना चलेगा है ना।
1: बस सही था। बरसा रे हुंदा वे आजकल, तुसी पता है आजकल नुकसान भी बड़े और बिच बंदे पर समझे
0: बिल्कुल बिल्कुल बो घाटी में हेरा ला कितना नुकसान हुआ कि
1: बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ बड़ी उससे पड़े थे। चंबे
0: जी चलिए
1: चंबे हुआ नुकसान।
0: बहुत ज़्यादा
1: हां जी
0: जी
1: चलो ना, चलो नागछत्री दया हो रहे बंदे ना, हम तो रे रहा था सब कुछ नहीं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल नागछत्री भले ही ना मतलब सोच लिया
1: हाँ जी
0: था
1: हाँ
0: कोई
1: जी हाँ जी, बस
0: मतलब भगवान तय चाह की कसी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ऐसे है ना जी।
1: कसी होना ये थी, कसी होना ये। हाँ
0: हाँ
1: जी
0: कजो के अपना घर बुच करे फिर बेघर बुचगा ना तो सो बड़ा कजो के 10 घर पूरे भी आक मैं ये रही तो तड़ी ना वीडियो वायरल हुई थी तो आक महिला के सो बड़ी रो कर दी थी सारा रूने
1: बड़ी
0: रा
1: बड़ी
0: जो कारण तो सो भी बड़ा जायज़ थो कि सो बल्लों थे कि इंदे करी हैं कि ऐसो के मेहनत करी करी मतलब घर पूरा है और ये पूरा पूरा
1: हाँ
0: घर विद जमीना समेत के सो लड़े हुआ।
1: जी, मतलब छापा रो आता, मतलब कुछ नहीं है इंदा, तो कुछ ही ना रहे। बड़ा
0: कुछ ना रहे हो हाँ
1: दुख, बड़ी दुखारी गल है ना,
0: बहुत ज़्यादा
1: बना देना।
0: बहुत ज्यादा है रहा ना कि जस घर मन जा है अपनी पाई पाई की कमाई करी पाई पाई है सुलाए नहीं है सो
1: हाँ
0: घर
1: जी
0: मतलब चले गए अच्छा सो घर
1: लंबे।
0: वो
1: हाँ
0: बचे
1: जी
0: अच्छा था बड़ा दुख लगता जी बड़ा दुख लगता।
1: देखो, बड़ा दुख होगा जी,
0: बहुत
1: बहुत
0: ज्यादा
1: दुख होगा।
0: चलिए जी कुंदन की थोड़ा ना पसंद कर ले
1: हाँ जी, बीर
0: मिली कुंड जी
1: हनुमान वाला देखो, बाण
0: कुंदने
1: जो मेरे बाण जो है। हाँ
0: मेरे अब भांजुआ
1: जी, बीर हनुमान वाले ने उठ उठ मेरा बाण जो है।
0: उठ मेरे भांजुआ की भांजुआ वो मेरे भांजुआ
1: ना उठ मेरे, वो डॉक्टर सुशांत भारद्वाज का गाना शायद, ठाकुर वाला शायद, ठाकुर।
0: गीतरे बोल बोलू कर दें तो है उठ भांजुआ
1: हाँ जी, उठ मेरे बाणजुआ वीर हनुमान, उठी करी लंका जो जाना।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी
1: हाँ जी ठीक है, हाँ
0: बिल्कुल इस गीता जो है तू सुतगर पहुंच ले है ना
1: जी ठीक
0: ठीक है जी
1: है,
0: धन्यवाद।
1: ओके।
0: चलिए श्रोता तो सब बन रहे हैं समय एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन री गूंज होगी और इन द अगले श्रोता आस होगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी हेलो हाँ जी नमस्कार जी
2: नमस्कार जी,
0: जी कौन बलुंदन और कड़ी थो बलुंदन
2: मैं योली हूँ बोलू करता।
0: योलियो बलुंदन क्या ना जी तुंदा।
2: मेरा नाम प्रकाश चंद है।
0: अच्छा प्रकाश चंद जी कुंदन गीत होना पसंद कर ले तो है
2: हाँ तो आ रही हूँ, गीत करना है अच्छा है, माता दी भेंट एक सुननी है, एक
0: हाँ जी बल्ला
2: माता
0: कुंद
2: दी भेंट ने मैं गाय के दसदा तुम्हें। हेलो।

0: जी जरूर द सगाई करी।
1: अपने गाय के दस्तान थोड़ा दे। हाँ
0: जी
1: हेलो।
0: हाँ जी, दसा ना गाय करी तो है।
1: हाँ मैं गाय के दस्तान है। कांगड़े लोका खैर ज्वाला माई मंदिर में
0: श्रोता तो ऐसा बन रहे समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सो की यही मुलाकात बुंदे रहने कुछ एक खास जानकारी लेके रहे हूँ। सचिन कपूर फिर हाजिर बुंदा तुंदे सभी रे रेडियो सेट में और फेसबुक रे माध्यम तो तुंदे फोन ना मंच। चलिए फिलहाल लेके चल दें श्रोतों और इस प्यारे दे गीत जो गया सोहन दे हिंद बने रहे तो सब रेडियो गुंजन रिगुन सो की कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं 7018879 पर नंबर रख मुके फिर 7018879 पर तो है कॉल कर सकते हैं इन छोटों।

0: ছোট এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন কর রো আর কার্যক্রম এস ওক্ত হিন্দি আপনি গপ্পা গান সো চল রই ইন তা শ্রোতা জুড়ে সকতে হিন কল করে সকতে হিন 7018817091 পর নম্বর এক মোকে ফিরে আউ শেয়ার করনু হা জনাব 7018817091 পর তো সব শ্রোতা কল করে সকতে হিন আর अपनी जानकारी के आंसू साझा कर सकते हैं। बहरहाल श्रोतों कार्यक्रम जो है चला दिन थोड़ा करे और हगूँ और अगली जानकारी होगी कि सो तुसु सभी रूबरू कर बंदे ना उन आची तुंदा अपना आरजे सचिन कपूर हा कुछ खास खबरें लेकर ही तुंदे वीडियो सेट में हाजिर हा श्रोतों और बिल्कुल गीत संगीत एक माध्यम हा कि इंदे जो श्रोतन त्यारा दिल थोड़ा करेगी सो खुश भी बचेगा अच्छा और तेरी फरमाइश अभी है जरूर पूरी कर दें श्रोतों कोशिश वेंदे इंदे तो चलिए कार्यक्रम जो थोड़ा करे आगो बढ़ेंदे और अगली जानकारी की है सो तुगे शेयर कर दें श्रोतों। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना पर लगाम कसने वास्ते कि असो परिवहन विभाग के असो बस चालक जो कि बस चालक वास्ते कि असो सख्त नियम लागू करी दिते हैं श्रोतों। यदि कोई चालक बस चलंदे समय मोबाइल फोन पर गल करू करदा हा और गल करदा पकड़े गो हा तो तसी पर 2000 रुपया के असो जुर्माना लगेगा ना हा। परिवहन विभाग के असो वर्ष 2014 रे पुराने दिशा निर्देश जो के असो अगमो के फिरे दोहरा हुआ और नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव तो किया सो लागू करी दिता है श्रोतों। नया नियम रे तहत किया श्रोतों सो यात्रा रे दौरान चालक रे मोबाइल पर ईने वाली कॉल अब सिर्फ बस सेवा जो परिचालक भुना सो रिसीव कर सकता है श्रोतों। परिवहन विभाग की सो पहली बार यात्री जो भी निगरानी में भागीदार की सो बना हुआ यदि कोई चालक जल्दी बस में मोबाइल रा इस्तेमाल करू करता है तो यात्री सेरा वीडियो बनाई करेगी सो परिवहन विभाग जो किया या फिर निगम जो किया सो भेजी सकते हैं श्रोतों। इस प्रकार होगी कि ऐसो जानकारी रा पिटारा धीरे धीरे खोल दे रहना हा श्रोतों तो यह सब हुणू कर देने इस समय कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा इंदे अगले श्रोता आसू की कनेक्टेड हैं पुसदन कौन बल्लू दे नमस्ते जी। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्कार सचिन जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक ना हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया और कर करे लग रही
1: लगना बरखा लग रही
0: बिल्कुल बरखा तो लग रही जी कौन दिन गीत सुनना पसंद कर ले जनाब
1: ब्रह्माणी माता सुनना आज
0: अच्छा ब्रह्माणी माता रा ठीक है धन्यवाद जी जरूर सुन लेते सु है ना जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद जी। श्रोतों तो सब होने करते हैं इस समय आरजे सचिन कपूर जो बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट में इंदे अगले श्रोता असु हो गए कनेक्टेड हैं नमस्ते जी माफ़ कर इंदे अक श्रोता असु हो गए कनेक्ट बुझे भी गया थी लेकिन फिर डिसकनेक्ट किया सो बुझ गया हैं लेकिन कनेक्ट पूछ सकते हैं जी दोबारा कॉल कर सकते हैं और कनेक्ट पूछ सकते हैं 7018817091 पर यारी फरमाइशा भरमाणी माता रा भजन किया सो उड़ना ज़रूर फरमाइशा रा दौरा था पूरा भी ऐसा ज़रूर करना बरहा लेता हूँ अगले श्रोता सो के सो कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
2: नमस्ते सर जी नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
2: और ठीक ठाक सर जी
0: बहुत बढ़िया जी तो दस तो ठीक ठाक ने
2: हाँ जी सर जी ठीक ठाक ने सर जी
0: कर करे लग रहे न
2: कुछ नहीं सर जी प्रोग्राम सुना थे बरखा लगी जो सर जी
0: अच्छा अच्छा
2: हाँ जी सर जी
0: जी ता क्या है फरमाइश है तुमने आज प्रोग्राम मंच
2: सर जी गाना सुनाई ने मिंजो सिंगरी दा ना है हिमाचली मुंडा
0: अच्छा
2: मैंने गाने तो बोले चारो धाम
0: चारो धाम
2: हाँ जी सर जी
0: चलो ठीक है जी जरूर होने ले तो सुए गीत है
2: धन्यवाद सर जी नमस्ते सर जी
0: धन्यवाद जी नमस्ते चलिए इन अगले श्रोता अस हो गए कनेक्टेड हैं जरूर कनेक्ट कर ले श्रोतों तो सब बने रहे आरजे सचिन कपूर सो की ऊंच अपने बन रहे हेलो,
1: हेलो। हाँ जी नमस्ते भाई जी,
0: नमस्ते जी। नमस्ते,
1: क्या हाल चाल है तुम्हारे?
0: इंदे हाल चाल ठीक ने जी? तो दसो तुंदा क्या हाल चाल ने? अच्छा,
1: इंदे बढ़िया, बस लगभग बरखा बुझे पींदे चा।
0: कौन बोलूं देन और कड़ी तो बोलूं देन?
1: ए दादा बोलूं दे बिजली
0: अच्छा, डाडा तुम क्या नाम दस तो है अपना जी?
1: बीना देवी।
0: बीना देवी। हाँ जी, बीना देवी जी कौन देने गीत थोड़ा पसंद कर ले? अच्छा,
1: मुझे ना आइडिया है ना, हम काम करें बीना देवी शादी है बात बाम मनी
0: कौन देने जी?
1: में दूर देश शादी है बात बाम मनी में।
0: दूरा देश सदैया भट बामनुआ।
1: हाँ जी
0: ठीक है जी, जरूर सुन ले। धन्यवाद
1: ठीक है, बड़े बड़े
0: जी। चलिए शो तो सभी फरमाइशा की सुई चली रहनी हीन, और सभी री फरमाइशा है जरूर पूरी कर ले। बहरहाल धीरे धीरे लेके चल दे तू सभी जो फरमाइशा री दौर री किनारी, और बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे। आइए जी,

0: শত এফ এম ব্যান্ডে 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো এসা বি টিউন কো রোর কার্যক্রম ইন দি আপনি গা পাগেন সো বিলকুল লাইভ চল রই তুন দা রেডিও সেট মা শত রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা মঞ্চ তাই ইয়া কার্যক্রম মঞ্চ জানকারি রা সিলসিলা গে আস হই চলি রেনা হা অর ইন দে শত ভি আস ওগে কানেক্ট বু চুকার দে হিন শত মেসেজ রে জরিয়ে বি গিয়া সো মেসেজ রে জরিয়ে বি গিয়া শত সো ফরমাইশা ইচ্ছু কর দি হ্যা ধ্যান ইস সময় দিতা हबजू दिता हा बहरहाल में दसू ने कि झूर हाखरी करना पैंती ना सू इस जानकारी होगी रूबरू चले इतों बाद श्रोता जो भी कनेक्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली थों अठवीं कक्षा वे पात्र विद्यार्थी जो इस वर्ष भी किया सो फ्री यूनिफॉर्म योजना योजना रा लाभ किया सो मुलना हा श्रोतों और शिक्षा निर्देशालय के सो वर्ष 2026-27 वे वास्ते सभी छात्रा तथा SC ST और BPL वर्ग रे छात्रा जो प्रति विद्यार्थी 600 रुपये देने री प्रक्रिया किया सो शुरू करी देती है श्रोतों यह राशि की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया वे माध्यम थो किया सो सीधा विद्यार्थी वे खाते में किया बैंक खाते में किया श्रोताओं सो पैगाने हाँ इस बार निर्देशालय किया सो PM श्री स्कूल और अन्य सरकारी विद्यालय व्यवस्था के अलग अलग पत्र माफ़ करा अलग अलग पत्र के ना सो जारी करे हिन श्रोताओं इसी सो गिन अगले श्रोता असोगे कनेक्टेड हिन नमस्ते जी
1: नमस्ते मेरा नाम दक्षिता ब्रह्मोरा वल्ली करदा
0: अच्छा क्या बात है भरमोर
1: अंजी
0: क्या बात है किने ने भरमोर आले सब
1: सब ठीक
0: करे लगुरेन
1: करना सब बे हुए
0: अच्छा और स्कूल ले छुट्टी भी उरी दूसू हो शायद है ना
1: अंजी
0: चलिए जी तो कदे है भरमोर आ रहा मौसम इस समय
1: अंजी तो धुंध पे हो या बदला मौसम
0: अच्छा बदला मौसम
1: अंजी
0: धुंध पे हो रहे
1: अंजी नहीं तो उसमें कविता होना ही है मेरे को दो तू पाई नहीं है
0: तो है व्हाट्सएप कर रहे हैं इस नंबर मंच पर मुझे मुड़े नहीं है एक्चुअली क्या कि बहुत सारे व्हाट्सएप इन दिन इस नंबर मंच तो आप मौके तो है हबजू ही कर दिया हजू कर दिया ना तो फिर हम सेव कर लेना है ना जी
1: अंजी
0: और जरूर पल्ले तुम दी कविता आऊं हर एक न्यूज चैनल में किया सो बोला
1: अंजी
0: ठीक है मेरा वादा रो
1: कहना मेरे फरमाइश आती तू है सोल भजन लाल शिव जी शिव के ला शो के बासी
0: धोनी धारो के
1: राजा
0: चलिए भोलेनाथ जी वह है शिव भजन की ऐसो जरूर हुन ले आना जी
1: अंजी
0: ठीक है जनाब धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद चलिए शो तो इन दिल हबजू जो कॉलर जुड़ रही थी ये सब भरमोरा थो जुड़ रही थी ये शो तो और बिल्कुल इन दे अबे तो तुसु सब भी हम बधाई भी देना चाहते जितने भी इन द वीडियो गुंजन रहे लिसनर हैं कि अबे टावर की असो थोड़ा और बड़ा लोगो करता हा थोड़ा और क्षेत्र की असो असु कैच कर ही लेना हा फेसबुक रे माध्यम थो और अपना ऐप रे माध्यम थो तो ऑल ओवर वर्ल्ड यह है कैच कर दें लेकिन जो रेडियो मन चल रहे बंदा ना सो वह है जो कि कम्युनिटी रेडियो तो 24-25 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किया सो 25-25 किलोमीटर है कवर कर देती है वह किया सो रेंज थोड़ी और किया सो बड़े गाने हाँ तो सभी जो बहुत बहुत मुबारक हूँ यह गलरी है ना इन द अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
2: नमस्ते
0: जी नमस्ते
2: नमस्ते मैं गाड़ी दा बोल नहीं सकदा
0: ना तो है मत बल्ला गद्दी गद्दी दा सु बोल रहे पर तो तू से गद्दी किया सो समझ सकदे न ता बड़ी अच्छी गल है जी
2: ठीक है बढ़िया रमेश बोला दा
0: हां जी रमेश जी बोला बोला बोला बोला क्या फरमाइश है रमेश जी तुंदे
2: मेसी बोल दे कि हाँ गाना सुनना है रेल मो रंग बदले
0: रित बदले
2: हाँ रेल मो रंग बदले दो चार
0: अच्छा रेल मो रंग बदले दो चार तो रेल मो तो रंग बदल दे या है ना जी
2: रेल मो तो रंग बदल दी है
0: हाँ तो रेल मो तो बदलना है रंग
2: अच्छा जी
0: ठीक है जी जरूर होना लेते सुबह फरमाइश
2: ठीक है जी सर
0: धन्यवाद बहुत सारी फरमाइशें हो चुकी शोदो, बहुत ज़्यादा फरमाइशें हो चुकी। और इस बीच है व्हाट्सएप रे जरिए भी किया सो हेरू कर देती है ईशु री ईशु पठानिया री फरमाइश छो रही योली थो शोतों जो कि IPH विभाग में अपनी सेवाएं दिन देन और हमेशा किया सो सेवा पुर तत्पर किया सो रिंदे हिन शोतों जाए त्योहार बो जाए सोमवार बो हमेशा अपनी सेवाएं किया सो खासकर अपने कजो के ग्रां अंदर लोकल इन ग्राएं तुसु पता हुए भी ना रहने दिंदा है ना सुना दिंदा है ता ऐसी कोई गल नहीं लेकिन फिर भी किया सो अपनी सेवा पर हमेशा तत्पर रहते हैं ना IPH डिपार्टमेंट थो नाता काफ़ी पुराना है त्यारा ता त्यारी फरमाइश आया चोर बजे रे छोरे अशो तो आइया त्यारी फरमाइश मगे है सो ये गीता है भी होने लेंदे हैं बने रहे तो ये सब आरजे सचिन कपूर सोगे और कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा है इस समय बने रहे जुड़े रहे आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन रहे और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता सोगी बन रहे ना सोगी जुड़ रहे हैं तेरे सब मेरे।

चलिए ठीक है, इशू जी तो है जोतापुर, बंगलू बंगलू भी पवाई ले था, बंगलू भी पवाई ले, फिलहाल है थोड़ा करी हगू चली बंदे हिन का जो कि फरमाइश रहा दौर के जो बड़ा मोटा बहुत सारी फरमाइश है हिन इशू पठानिये री फरमाइश थी इशू तो जो कि योल नोडरानी मंदिर रहे लादेन चौंक रहे निवासी हिन, बहुत बड़ा ना है। चलिए था कार्यक्रम जो हगू बढ़ेंदे इन शो तो और अगली फरमाइश के सो पूरी कर देना चाहिए तो वट फिर यासू खबर लेकर के बहुत सारी जानकारी लेकर के हाजिर बुना, फिलहाल इंजॉय कर देना।

हाँ वाकई मैं नशो तो अगर चौर धाम अह चली बे करी भी इंदे और तत्थों बाद बे है मनु रा दिल दुखंदे तत्थों बाद बे है अपने रा दिल दुखंदे न अपने माँ बाप री सेवा ना कर देन त्यारा दिल दुखंदे इन शो तो तो फिर विसो चौर धाम करने रा कोई फ़ायदा नहीं। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस भी बनता और कुछ क्या है जो बाहर हेरने मंज ने सो है इंटरनली नहीं इंटरनली है बहुत सारी चीज़ें गए सो सीखते भी बहखते भी हिन और करते भी हिन श्रोताओं। मेरा ये मानना है कि अगर तो है अपने माँ बड़े री अच्छी सेवा करी ली अगर तो है सियाने री सेवा करी ली है तो है मनु री मदद करी थी ना जो ज़रूरतमंद असेरी तो है मदद करी थी है ना तो चौर धाम के ना सो अपने आप तो है घूमे लें हिन और अगर तो है चौर धाम घूमे कर आए और इचगर सरीक तो है कुछ भी बलीता बुरा भला बरीता बीड़ा पिछू गोली पे जमीन ना पिछू गोली पे पानी पिछू गोली पे न कि दूए अरे ऐसी तैसी कर रही थी मार मकान चली पे इन सियाने भी तो है इज्जत ना करो करते तो फिर भी तस चौर धाम मारा किया सो कोई फायदा नहीं कोई मूल्य किया सुना रहे गंदा फिलहाल अगले ही फरमाइश कर देने।

बल देना कि सब कुछ न मुलदा जिंदगी मंचना, कुछ अधूरी ख्वाहिश है तो जिंदगी जीने रखी असो मजा दिंदी ही न, और सब कुछ मुड़ेगा अच्छा जिंदगी मता इंसान की असो अपने आप जो ही परमात्मा मन ना लगे पिया। अले इंसान रह बस समझ बहुत कुछ हा और बहुत कुछ नहीं पिया, फिर भी इंसान तुसको पता कुतूना अहंकार के असो अपने अंदर भरी करी रखा हा शो तो।

एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हूँ सचिन कपूर हाँ। और फिलहाल ले लेने तो सुतो इजाज़त, 2 मिनट बाद फिर मोलो 5 बजे बुलेटिन लेकर इन कुछ खास खबर और लेकर इन तुम बीच और इस गादे कार्यक्रम तो हूँ सचिन कपूर लेनो अब इजाज़त। नमस्ते धर्मशाला, हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे, माँ बाप री सेवा जरूर कर दे रहा।

0: स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
1: ऑडियो जंगल
0: 21 अगस्त से 3 सितंबर तक विधानसभा का मानसून सत्र संभव। हरे रंग की होंगी इलेक्ट्रिकल बसें। चलती बस में मोबाइल सुनने पर फंसेंगे ड्राइवर। परिवहन निगम ने कसा सिकंजा श्रोताओं, 2000 रुपये तक कटेगा चालान। पहली से आठवीं तक पात्र छात्राओं को मिलेगी फ्री वर्दी। चुनाव को ब्यास नदी से जोड़ेगी NHPC। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू हो सकता है। राज्य सरकार जो है वो इसे 3 सितंबर तक चलाना चाहती है। विधानसभा और लोक भवन के साथ चर्चा के बाद इसकी नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबा मानसून सत्र रखने की इच्छा जताई थी। कैबिनेट की पिछली बैठक में भी इस बारे में चर्चा हुई थी, हालांकि तब 15 अगस्त के बाद की डेट जो है वो फाइनल करने को कहा गया था। इसी मानसून सत्र में विधानसभा के उपाध्यक्ष के खाली पद को भी भरा जा सकता है और चीफ की नई नियुक्ति भी सरकार कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की जनता को अब हरे रंग की नई इलेक्ट्रिकल बसों में सफर करने का सुनहरा मौका मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री इन बसों को जो है वो हरी झंडी दिखाकर जनता के लिए समर्पित करेंगे। वहीं निगम की बसों में किराए का डिजिटल भुगतान करने के लिए हिमबस स्मार्ट ट्रैवल कार्ड भी जो है वो शुरू किया जा रहा है। इस कार्ड से आम यात्रियों को 5% और वरिष्ठ नागरिकों को 15% की जो है वो छूट मिलेगी। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बसों की कमी दूर करने और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने की तर्ज पर जो है वो रखा गया है। निगम की 297 नई इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद की है श्रोताओं। इनमें से 240 बसें निगम के पास जो है वो पहुंच चुकी है, जबकि शेष बसें जो बची हुई बसें हैं वो आधे सफर में हैं और जल्द हिमाचल पहुंचेंगी। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने बस चालकों के लिए जो है वो सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब यदि कोई चालक बस चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2000 रुपये का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने जो है वो वर्ष 2014 के पुराने दिशा निर्देश को निविस्तृत करते हुए नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से जो है वो लागू कर दी है। नए नियमों के तहत यात्रा के दौरान चालक के मोबाइल पर आने वाली कॉल अब बस का परिचालक रिसीव करेगा। यदि किसी इमरजेंसी में कॉल आती है या कुछ इमरजेंसी कॉल उसे आती है तो उस स्थिति में जो है वो चालक को स्वयं बात अगर करनी पड़ती है तो पहले उसे बस को सुरक्षित स्थान पर जो है वो रोकना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने पहली बार यात्रियों को भी जो है वो निगरानी में भागीदार बनाया है। यदि कोई चालक चलती बस में मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो यात्री उसका वीडियो बनाकर परिवहन विभाग या निगम को भेज सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा के पात्र विद्यार्थियों को इस वर्ष अभी फ्री यूनिफॉर्म योजना का लाभ जो है वो मिलेगा। श्रोतम, शिक्षा निर्देशालय ने वर्ष 2026-27 के लिए सभी छात्राओं तथा SC ST और BPL वर्ग के छात्रों को प्रति विद्यार्थी 600 रुपये देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि DBT के माध्यम से जो है वो सीधा विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस बार निर्देशालय ने PM शिविर स्कूलों और अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए अलग अलग पत्र जारी किए हैं। श्रोताओं, ऊर्जा सेक्टर में नई ऊंचाइयों छूने वाले देश की जो है वो नवरत कंपनी जो है वो NHPC हिमाचल में एक और प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है। जी बिल्कुल, 2394 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट व्यास चुनाव लिंक परियोजना हेतु जो है वो NHPC ने दस्तावेजों और तकनीकी प्रक्रियाओं को गति देते हुए 10 अगस्त तक ऑनलाइन टेंडर जो है वो आमंत्रित किए हैं। श्रोतों, NHPC के कॉरपोरेट ऑफिस फरीदाबाद से मिली जानकारी के मुताबिक ऊर्जा कंपनी NHPC को भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण नदी जोड़ो प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य सौंपा है। इसके लिए विभिन्न निर्माण एजेंसियों से जो है वो मांग जो है वो की जा रही है। श्रोतों, राज्य सरकार ने शिक्षकों को मिलने वाले नेशनल और स्टेट अवार्ड की धनराशि बढ़ा दी है। श्रोतों, कैबिनेट में हुए फैसले के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो गई है। अब नेशनल आबादी टीचर को 2 लाख रुपए और स्टेट अवधि वाले को 1 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। साथ ही ये बदलाव भी हुआ है कि अब आबादी टीचर को जो है वो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, इन्हें पहले से ही अवार्ड मिल चुका है। श्रोतों, इसी के साथ ये खास बुलेटिन समाप्त होता है। आप सभी बने हुए हैं इस समय वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ। नमस्कार।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: गुड नाइट।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

नमस्कार श्रोताओं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, नमस्कार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते है। मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिएगा, मेरे नमस्ते को स्वीकार कीजिएगा। मैं आप सभी का अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर, आप सभी का अपना रेडियो दोस्त हाजिर हुआ हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतगण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ, विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और लाइफ में कुछ एक तकलीफ जो है वो ज़रूर होती है श्रोताओं, कुछ एक एक जो दौर होता है ना लाइफ में दुख तकलीफ का, वो अपनों की पहचान करवाता है। वो दौर भी और वो एक फेस भी जो है वो लाइफ में आना मुझे लगता है ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको तब अपनों की पहचान जो है वो हो जाती है। कौन आपके अपने हैं उस फेस में ये पहचान हो जाती है जी, बिल्कुल। कौन आपके साथ खड़े हैं और कौन सिर्फ आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ जुबान के मीठे होते हैं, मीठे हैं वो आपके साथ नहीं होंगे। जो दुख तकलीफ में आपके साथ खड़े हैं श्रोताओं, जो हॉस्पिटल में आपके साथ खड़े हैं, वो आपके अपने हैं। तो मुझे लगता है कि ये फेस भी आना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कि हमें अपनों की पहचान जो है वो बाखूबी हो जाती है। तो मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को इस समय होस्ट कर रहा हूँ। अन्य जानकारियाँ, बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो हम अब तक साझा करेंगे, शेयर करेंगे। और साथ ही साथ श्रोताओं, गीत संगीत का पिटारा जो है वो तो खुलता ही रहेगा, वो तो उस चीज़ से आप सभी बाखूबी जो है वो जानते हैं इस चीज़ को। तो इस समय की बात करूँ श्रोताओं, तो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान इस समय धर्मशाला में बना हुआ है। ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो लगभग 85% के आसपास जो है वो ह्यूमिडिटी इस समय धर्मशाला में बनी हुई है। यह है मौसम की जानकारी जो हमने आप तक पहुँचाई है। या अन्य जानकारी के साथ भी आपको साथ ही साथ रूबरू जो है वो करवा देते हैं श्रोताओं। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो 21 अगस्त से शुरू हो सकता है। राज्य सरकार इसे 3 सितंबर तक चलाना चाहती है। विधानसभा और लोक भवन के साथ चर्चा के बाद श्रोताओं इसकी नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबा मानसून सत्र रखने की इच्छा जो है वो जताई थी। कैबिनेट की पिछली बैठक में भी इस बारे में चर्चा हुई थी, हालांकि तब 15 अगस्त के बाद की डेट फाइनल करने को कहा गया था। इसी मानसून सत्र में विधानसभा के उपाध्यक्ष के खाली पद को भी भरा जा सकता है श्रोताओं, और चीफ की नई नियुक्ति भी सरकार कर सकती है। जी बिल्कुल, इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा, पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ, आपका अपना आरजे। तो लेके चलते हैं आप सभी को श्रोताओं इस गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और सचिन कपूर के साथ आप सभी बने हुए हैं। श्रोतों, बहुत प्यारा संगीत आप सभी ने सुना, अपने अपने वीडियो सेट पर देखा है पहली बार।

बारिश का असर जो है वो सुबह कांगड़ा शहर में देखने को भी मिला। श्रोतों, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मटोर शिमला पर गीता भवन के समीप एक विशालकाय पेड़ गिर जाने से जो है वो यातायात कई घंटों तक जो है श्रोतों वो बाधित रहा। जानकारी के अनुसार बताना चाहते हैं, सुबह करीब 4 बजे गीता भवन के समीप सड़क किनारे खड़का एक विशाल पेड़ अचानक जो है वो सड़क पर गिर पड़ा। श्रोतों, पेड़ सड़क के साथ गुजर रही लो लाइनें, वहाँ पर मतलब जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की लाइनें थी, लाइनों पर गिरा श्रोतों, है ना, जो तारे थी, जो वायर थी, जिससे बिजली विभाग के ढांचे को भी जो है वो नुकसान पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, फायर ब्रिगेड और अन्य संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची और कहीं ना कहीं जो है वो स्थिति को संभाला श्रोतों। तो आजकल हम सभी बाखूबी जानते हैं कि लैंडस्लाइड है, और माफ़ करें, बरसात है, तो लैंडस्लाइड होना जो है वो संभव है ना, इस चीज़ की ये चीज़ें जो है वो ज़रूर होंगी। तो आप सभी इस चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें क्योंकि बरसात है, यात्रा जो है वो कम करें, दूर दराज वाले इलाकों में जो है वो ना जाएं, और हो सके तो जब तेज़ आंधी तूफान या बारिश चल रही है उस समय कहीं एक स्थान पर जो है वो रुक जाएं। अपनी सुरक्षा जो है वो आपकी आप ही के हाथ में है श्रोताओं, तो अपनी सुरक्षा पहले तय कीजिए। जानकारी का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, जानकारी का पिटारा यूं ही चलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं बिल्कुल अपने वीडियो सेट पर। कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा जो है श्रोताओं वो भी खुलता जा रहा है और साथ ही साथ बिल्कुल गीत संगीत का जो हमारा पिटारा है वो भी खुल रहा है। थोड़ा सा दुख हो रहा है इस खबर को पढ़ने से पहले क्योंकि मैं इसी स्कूल में जो हूँ श्रोताओं वो पढ़ा हूँ। जी बिल्कुल, केंद्रीय विद्यालय योल को ईमेल से जो है वो बम से उड़ाने की धमकी जो है वो मिली है। हाँ तो बिल्कुल दुख तो हो रहा है मुझे। फिलहाल जो मेल आती हैं वो शरारती तत्वों का जो है वो कार्य रहता है श्रोताओं, वही जो है वो इस प्रकार की मेल करते हैं। वैसे बताना चाहता हूँ, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करना था चाहता हूँ, जिला कांगड़ा के योल स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय को ईमेल के माध्यम से जो है वो बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। जी बिल्कुल श्रोताओं, धमकी भरा ईमेल खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजा गया है जिसमें विद्यालय के अलावा अन्य सरकारी संस्थानों को भी निशाना बनाने की चेतावनी जो है वो दी गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है और प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू कर दी है श्रोताओं। पुलिस के अनुसार जो है वो केंद्रीय विद्यालय योल के प्रधानाचार्य संजीव राणा की शिकायत पर पुलिस थाना धर्मशाला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 तथा 353 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है श्रोताओं। शिकायत में बताया गया है कि विद्यालय के आधिकारिक ईमेल जो ऑफिशियल ईमेल होती है उस पर खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से जो है वो धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें विद्यालय को बम से उड़ाने और अन्य सरकारी संस्थानों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है श्रोताओं। एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस ईमेल के स्रोत और धमकी देने वाले की पहचान करने के साथ साथ सभी पहलुओं का गहनता से जाँच जो है वो कर रही है। तो बिल्कुल श्रोताओं, कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का ईमेल जो है वो प्रधानाचार्य के पास आया है तो वो बिल्कुल किया गया है श्रोताओं और अब इस पर जो है वो पुलिस अपना कार्य जो है वो शुरू कर रही है। जांच जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है श्रोताओं। तो कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम रेडियो सेट पर। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।

शो तो एफ एम 91.9, शुद्ध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग सुन रहे हैं। बिल्कुल श्रोताओं, बहुत प्यारे से गीत आप सभी ने सुना, हम यार हैं तुम्हारे, हाँ मैंने भी प्यार किया, मूवी से लिया गया गीत था श्रोताओं, और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना आपके अपने रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता को अब हरे रंग की नई इलेक्ट्रिकल बसों में सफ़र करने का सुनहरा मौका जो है वो मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री इन बसों को जो है वो हरी झंडी दिखाकर जनता के लिए समर्पित आज कर चुके हैं श्रोतों। वहीं निगम की बसों में किराए का डिजिटल भुगतान जो है वो करने के लिए हिम बस स्मार्ट ट्रैवल कार्ड जो है वो शुरू किया जा रहा है श्रोताओं। इस कार्ड से आम यात्रियों को 5% और वरिष्ठ नागरिकों को जो है वो 15% तक की छूट जो है वो मिलेगी श्रोताओं। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बसों की कमी दूर करने और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने की जो है वो एक फरियाद सी जो है वो तेज हो चुकी है श्रोतों। निगम में 297 नई इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद की है श्रोतों। इनमें से 240 बसें जो है वो निगम के पास पहुंच चुकी हैं, जबकि बची हुई आधे सफ़र में हैं अभी तक, और जल्द जो है वो हिमाचल प्रदेश की प्यारी सी देवभूमि में जो है वो पहुंच जाएंगी आधी बस जितनी भी बसें बची हैं। अब 297 जो है वो पहुंच चुकी है श्रोतों, यानी कि 240 बची हैं, तो वो जल्द हिमाचल प्रदेश की पावन धरती पर जो है वो पहुंचने वाली हैं श्रोतों। तो आइए जी, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, पिटारा यूँ ही खुलता रहेगा, बने रहेगा, जुड़े रहेगा आरजे सचिन कपूर के साथ गूंज अपने मन की।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय जो है वो आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी मौसम से रिलेटेड जो जानकारी है श्रोताओं वो आप तक पहुंचा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में जारी मानसून की बारिश के बीच जो है वो मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जो है वो फिर से भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया है। श्रोतों राज्य के कुछ एक क्षेत्रों में जो है वो 31 जुलाई यानी कि कल जो है वो भारी से बहुत भारी वर्षा की यानी कि बारिश की आशंका जताई जा रही है। श्रोतों मौसम विभाग ने जो है वो कहा है कि चंबा, कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है 31 के लिए, जबकि कुल्लू, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिला के लिए जो है वो येलो अलर्ट जारी हुआ है। जी बिल्कुल, यहां पर भारी बारिश होने वाली है, कांगड़ा वालों फिर से सतर्क रहिए। इसी के साथ श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि लाहौल स्पीति में भी भारी बारिश की आशंका जो है वो जताई जा रही है और येलो अलर्ट वहां भी जारी किया है। श्रोताओं 1 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी रहेगा और वहीं 2 अगस्त को भी चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिला के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। श्रोताओं 3 व 4 अगस्त को भी कई इलाकों में जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बिल्कुल श्रोताओं इन चीज़ों से जो लैंडस्लाइड वाले एरिया है श्रोताओं जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है उन जगहों पर जो है वो ना जाइएगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्मशाला में जो है वो छोटे छोटे नाले हैं तो उन नालों की साइड जो है वो ना जाइएगा, है ना जी, क्योंकि मौसम कभी भी जो है वो रुख बदल सकता है, कभी भी मौसम जो है वो बदल जाता है और अक्सर मौसम जो है वो बदलते ही हैं। श्रोताओं यहाँ पर इंसान बदल जाते हैं, ये तो फिर मौसम है और मौसम की तो रीत है बदलना। फिलहाल हमारी रीत है आप सभी श्रोताओं को खुश रखना जानकारियों के माध्यम से भी और गीत संगीत के माध्यम से भी। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। अच्छा ये गीत मुझे बहुत प्यारा लगता है वाकई में ही, कि चुपके चुपके रात दिन, माफ़ करिए गज़ल है, रात दिन आंसू बहाना जो है वो याद है, गुलाम अली जी की आवाज़ में ये प्यारा सा प्यारी सी गज़ल है। आप सभी के वीडियो सेट में हम सुनाते हैं आप सभी को ये गज़ल, बने रहिएगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतों कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का, सभी सुनने वालों का, सभी हमारे श्रोताओं का। जानकारियों का पिटारा जो है वो धीरे धीरे खुल रहा है श्रोताओं, और जानकारियों के साथ साथ हम आप तक बहुत प्यारे प्यारे गीत भी पहुँचा रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ एक गज़लें जो है श्रोताओं वो भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। वैसे असली मज़ा तो गज़लों में आता है ना, और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए जो है वो परिवहन विभाग ने बस चालकों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं श्रोताओं। जी बिल्कुल, अब यदि कोई चालक बस चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर जो है वो 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने वर्ष 2014 के पुराने दिशा निर्देश को करते हुए नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है श्रोताओं। नए नियमों के तहत यात्रा के दौरान चालक के मोबाइल पर आने वाली कॉल अब बस का परिचालक रिसीव करेगा। यदि किसी इमरजेंसी में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, कुछ इमरजेंसी कॉल आ जाती है चालक को, तो वो स्वयं बात करना चाहता है तो उस समय जो है वो उसे बस रोकनी पड़ेगी, और बस एक सुरक्षित स्थान पर जो है वो रोकना अनिवार्य कर दिया है श्रोताओं। सुरक्षित स्थान पर बस रोकें और उसके बाद जो है वो फ़ोन में वो चालक बात कर सकते हैं। यदि कोई इमरजेंसी हो जाती है, कुछ इस प्रकार की घटना जो है वो हो जाती है, उसके घर से कॉल आता है या फिर कुछ भी ऐसी बात हो जाती है श्रोताओं, तो परिवहन विभाग ने पहली बार यात्रियों को भी जो है वो निगरानी में भागीदार बनाया है श्रोताओं। यदि कोई चालक चलती बस में मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो यात्री उसका वीडियो बनाकर परिवहन विभाग या निगम को भेज सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जानकारी इसी तरह चलती रहेगी श्रोताओं, जानकारी का पिटारा इसी तरह चलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारी सी एक और गज़ल की, और वो कागज़ की किश्ती। अरे वाह क्या बात है, बहुत प्यारा सा ये गीत है, माफ़ करें गज़ल है श्रोताओं, और आज फिल्म से ली गई ये गज़ल है श्रोताओं, जगजीत सिंह की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के वीडियो सेट पर।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और शाम के 7 बज चुके हैं। श्रोतों अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। लोकसभा ने ये विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूँगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य की सहायता करना जारी रखेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि वायुसेना SIDM उद्योग और स्टार्टअप समुदाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने,

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेडियो जो कि सचिन कपूर। अंतराल के बाद आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आइए श्रोतो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। राज्य में बारिश के कारण सड़क, बिजली और पेयजल योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। श्रोतों बारिश के चलते भूस्खलन से लगभग 155 सड़कों पर जो है वो वाहनों की आवाजाही जो है वो थम गई है श्रोतों, जबकि 72 ट्रांसफार्म और लगभग 70 पानी की स्कीमें भी जो है वो ठप पड़ गई हैं श्रोतों। प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक 57 सड़कें मंडी ज़िला में बंद है और बिल्कुल श्रोतों इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, प्रदेश भर में जो है वो 180 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। दिन भर सड़कों का जो है वो बहाल करने के चलते कार्य के बाद राज्य में बंद पड़ी सड़कों की संख्या 152 रह गई थी श्रोतों। जिला मंडी में सबसे अधिक 57 सराज में जो है वो 33 और पद्दर में जो है वो 8, सुंदरनगर में 2 और करसोग, धर्मपुर तथा जोगिंदरनगर सब डिवीज़न की एक सड़क जो है वो शामिल है। रिपोर्ट के तहत चंबा ज़िला में 33, कुल्लू में 31 और शिमला तथा सिरमौर में 14 सड़कें ठप हैं श्रोतों। डलहौजी उपमंडल के 38, चंबा 11, तीसा 8 और सलूणी व भटियात सब डिवीज़न का एक एक ट्रांसफार्म जो है वो ठप है श्रोतों। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो 68 पेयजल योजनाएँ भी बंद पड़ी हैं श्रोतों, जिसमें हमीरपुर ज़िला में 23, बिलासपुर में 18, चंबा में 15, सिरमौर में 9, शिमला में 2 व मंडी की 1 पानी की स्कीम जो है वो शामिल है श्रोतों। मॉनसून में 15 मौतें हुई हैं। जी बिल्कुल श्रोतों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मॉनसून सीज़न में जो है वो 30 जून तक यानी कि आज तक जो है वो लगभग कुल मिलाकर जो है वो 15 मौतें हुई हैं श्रोतों। इनमें से लाहौल स्पीति ज़िला में जो है वो लैंडस्लाइडिंग के कारण 13 हुई हैं और चंबा में 1 मौत हुई है श्रोतों। किन्नौर ज़िला में फ्लैश फ्लड के कारण जो है वो 1 मौत दर्ज हुई है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं श्रोतों, मानसून सीज़न है, यात्रा को कम कर दीजिएगा, नदी नालों की साइड ना जाइए, लैंडस्लाइडिंग एरिया की साइड ना जाइए और पहाड़ों की ओर जो है वो रुख बिल्कुल मत कीजिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।
4: राजा

श्रोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला चला हुआ है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक और जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा के पात्र विद्यार्थियों को इस वर्ष भी जो है वो फ्री यूनिफॉर्म योजना का लाभ मिलेगा। श्रोतो शिक्षा निर्देशालय ने वर्ष 2026-27 के लिए जो है वो सभी छात्रों को तथा SC ST और BPL वर्ग के छात्रों को प्रति विद्यार्थी 600 रुपये देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रोतो ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरम यानी कि DBT के माध्यम से जो है वो सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस बार निर्देशालय ने PM शिवी स्कूलों और अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए जो है वो अलग अलग पत्र जारी किए हैं। बिल्कुल श्रोतों, PM शिवी स्कूलों और अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए जो है वो अलग अलग पत्र जारी किए हैं। आइए तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ लेके चलते हैं आप सभी को इस बेहद खूबसूरत से।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में। इस नाचीज का नमस्ते एक बार फिर से जो है वो स्वीकार कीजिएगा। चलिए लेके चलते हैं आप सभी को बाहर। इस समय श्रोतों बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं जो हैं वो चली हुई हैं और बिल्कुल बड़ा शांत सा इस समय मौसम है, और बारिश के बाद जो है वो वाकई में ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखना जो है वो क्लियर दिखता है ना, धौलाधार पर्वत जो है वो बिल्कुल इस समय क्लियर दिख रहे हैं। हल्की हल्की जो है वो रात होने लगी है, शाम जो है वो होने लगी है, और यहाँ की शाम जो है वो बहुत खूबसूरत होती है। श्रोतों धर्मशाला की शाम बहुत हसीन और खूबसूरत होती है। बहरहाल चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम में अब आप सभी को रूबरू करवाते हैं अगली जानकारी के साथ। ऊर्जा सेक्टर में नई ऊंचाइयां छूने वाली आदेश की नवरत कंपनी NHPC हिमाचल में एक और प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो कर रही है। 2354 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ब्यास चुनाव लिंक परियोजना हेतु NHPC ने दस्तावेज और तकनीकी प्रक्रियाओं को गति देते हुए 10 अगस्त तक ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किए हैं। श्रोतों NHPC के कॉरपोरेट ऑफिस फरीदाबाद से मिली जानकारी के मुताबिक ऊर्जा कंपनी NHPC को भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण नदी जोड़ो प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य सौंपा है। इसके लिए विभिन्न निर्माण एजेंसियों से जो है वो मांगी जा रही हैं, बिल्कुल सुझाव जो है वो मांगे जा रहे हैं श्रोताओं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ इस नाचीज के साथ लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस समय चला हुआ है गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए जी, जिंदगी में बहार तो सभी की होती है शोधो, किसी की ज़िंदगी में बहार होती है तो किसी में किसी की ज़िंदगी में कुछ और ही हो जाता है। फिलहाल हम अब चलेंगे एक छोटे से अंतराल की ओर और अंतराल के बाद मिलते हैं आप सभी से। बने रहिएगा वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू ठीक किया है तूने,

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
5: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी।
6: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
7: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज,

0: शोधो एफ एम एंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और 7:45 हो चुके हैं श्रोतो, और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: किया रवाना, कहा 1000 इलेक्ट्रिक बसें और खरीदेगी सरकार। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधेयक को राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सराहा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, प्रदेश का इतिहास, अर्थव्यवस्था, बोलियां व राजनीति 6-8 कक्षा के पाठ्यक्रम में होंगे शामिल। और सिरमौर जिला के हरिपुर धार के लोगों ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की सरकार से की मांग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिले के क्यारी घाट में 297 नई टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के विभिन्न डिपो के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने हिम बस प्लस कार्ड का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बसों से न केवल लोगों की यात्रा सुगम होगी बल्कि ये स्वच्छ, हरित, आधुनिक व टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के बाद से HRTC के बेड़े का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इन बसों के साथ ही अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वर्ष 1000 और इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही है। इसके अलावा 100 हाइड्रोजन बसों को खरीदने पर भी विचार किया जा रहा है।
2: 97 बसें इलेक्ट्रिकल आज हमने विभिन्न डिपो में भेज दी है। अब हमारे पास 500 बसों का फ्लीट इलेक्ट्रिकल का हो गया है। 1000 इलेक्ट्रिकल बसेज और लाने की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आने वाले समय में 100 हाइड्रोजन बसेज के बारे में भी विचार कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जो वातावरण है, प्रकृति है, उसको बचा सके, जो क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान हो रहा है, हिमाचल हिंदुस्तान की सबसे लीडिंग स्टेट बने, इस दिशा में हमारी सरकार ने कार्य कर रहे हैं।
1: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण, सतत व पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने और HRTC को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अग्निहोत्री ने कहा कि हिम बस प्लस कार्ड की शुरुआत सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सराहना की है। राज्यपाल ने आज लोकभवन शिमला में राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची से हिमाचल प्रदेश स्थानीय निकायों की आम चुनाव 2026 की रिपोर्ट प्राप्त की। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि सशक्त, उत्तरदायी और जवाबदेह संस्थाएं जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला होती हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों का सफल आयोजन प्रदेश की जनता, राजनीतिक दलों व चुनाव से संबंधित अधिकारियों की लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बीच हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने भी आज लोकभवन में राज्यपाल को आयोग की वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा व राज्यसभा से वंदे मातरम के अपमान के विरुद्ध कानून पारित होना देशवासियों के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि जिस वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रभक्ति और बलिदान की भावना जगाई, उसके गायन के दौरान राजनीतिक विरोध के नाम पर बैठे रहना या सदन से चले जाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति से जुड़े प्रतीकों का सम्मान हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
3: जिस प्रकार से कानून राज्यसभा में पारित हुआ, आज लोकसभा में भी पारित हुआ, उसके अंतर्गत एक कानून की व्यवस्था के अंतर्गत सजा का प्रावधान होगा जो वंदे मातरम का अपमान करेगा, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये निश्चित रूप से भारत के अंदर जिस वंदे मातरम को लेकर के देश की स्वतंत्रता हासिल की गई, जिस जैसे नारे, उस पर कोई टिप्पणी करना, उसका अपमान करना, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं था। और ये कदम भी बहुत सराहनीय कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है और इसका भी मैं अभिनंदन।
1: सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज सोलन सब्जी मंडी के समीप हिम इरा भंडारण कम कैफे के नवीनीकरण किए गए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे बिक्री केंद्र किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों व लघु उद्यमियों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित इतिहास, अर्थव्यवस्था, बोलियां, राजनीति और व्यंजन से जुड़ी जानकारी को 6-8 कक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। शिमला में आज 6-8 कक्षा की पुस्तकों में बदलाव व सुधार को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। रोहित ठाकुर ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नए पाठ्यक्रम की इन पुस्तकों को स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए उपयोग में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर के समीप डुग्घा क्षेत्र के बसदेहड़ा लाहड़ गांव का दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने उनके समक्ष सड़क, पेयजल व हैंडपंप से संबंधित विभिन्न समस्याएं और मांगे रखी। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद गाँव की सड़क को पक्का करने का कार्य आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव के हैंडपंप के पानी की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी और पानी की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर हैंडपंप को विद्युत मोटर से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी उद्देश्य से वे ग्रामीण क्षेत्रों का नियमित दौरा कर लोगों की समस्याओं को समझने और उनके शीघ्र समाधान के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हमीरपुर जिले के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनसे जिले के विकास को नई गति मिली है। सिरमौर जिला में रेणुकाजी विधानसभा के दुर्गम हरिपुर धार क्षेत्र के लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर धार को सिविल अस्पताल का दर्जा देने और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की राज्य सरकार से मांग की है। क्षेत्र की करीब 6 पंचायतों के जन प्रतिनिधियों ने आज अपनी समस्याओं के संबंध में हरिपुर धार के नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान दिउड़ी खड़ाहा पंचायत के प्रधान विनय चिंटा ने बताया कि इस स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, जिसके चलते 3 विधानसभा क्षेत्रों की करीब 20 पंचायतों के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
4: लगभग 3 विधानसभाओं के लोग अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सिविल अस्पताल हरिपुर धार के ऊपर निर्भर थे, लेकिन जब से हमारा सिविल अस्पताल बंद हुआ है, स्वास्थ्य क्षेत्र का हमारा इतना बड़ा क्षेत्र लाचार हालत में पड़ा हुआ है। अब हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है, हम चाहते हैं कि हमारी इस मांग को माना जाए, ये जायज मांग है। हमारे तकरीबन 20 पंचायतों के लोग स्वास्थ्य सेक्टर के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
1: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि खेल गतिविधियों से बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और आत्मविश्वास का विकास होता है। बिलासपुर जिले के केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है। धर्माणी ने कहा कि क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घुमारवीं, हटवाड़, भराड़ी और कपाहड़ा विद्यालयों को CBSE से संबद्ध किया गया है। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह भाजपा फोबिया से ग्रस्त हो चुके हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी मुद्दा सामने आए तो मुख्यमंत्री बिना तथ्यों के भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, आर्थिक दबाव और सरकार की नीतियों से परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान केवल अपनी राजनीतिक छवि बचाने पर केंद्रित है।
4: मुख्यमंत्री
5: मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा फोबिया से पूरी तरह से ग्रस्त है। कुछ दिन पहले एक एनजीओ इनके चुनाव के समय जो एफिडेविट इन्होंने दिए थे उसके आधार पर उन्होंने आकलन किया और आकलन करके एक रिपोर्ट छपी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के पास 7,80,00,000 रुपए की संपत्ति है और वो उत्तरी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। अब उस आकलन के बाद भी मुख्यमंत्री इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा। हमने कभी कुछ कहा नहीं, हम तो बधाई दे रहे हैं, हमारे को उससे कोई आपत्ति नहीं, परंतु हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय अपनी संपत्ति के साथ साथ जनता का भी ध्यान रखें।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्यारी घाट से 297 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा 1000 इलेक्ट्रिक बसें और खरीदेगी सरकार। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधेयक को राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सराहा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, प्रदेश का इतिहास, अर्थव्यवस्था, बोलियां व राजनीति 6-8 कक्षा के पाठ्यक्रम में होंगे शामिल और सिरमौर जिला के हरिपुर धार के लोगों ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की सरकार से की मांग। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे थे मेरे यानी सचिन कपूर के साथ। तो श्रोतो, कहते हैं ना कि वक्त किसी का नहीं होता और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, ये बात वाकई में ही हकीकत है। वक्त ना आपके लिए रुकेगा ना मेरे लिए रुकेगा और अब वक्त हो चुका है आप सभी से आप सभी को टाटा बाय बाय बोलने का। श्रोतो, अलविदा तो नहीं कहेंगे क्योंकि कल फिर मिलेंगे और कभी अलविदा ना कहना। श्रोतो, तो फिलहाल मैं सचिन कपूर आप सभी से लेता हूँ इजाज़त, अपने शब्दों को देता हूँ यहाँ पर विराम। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो गुंजन को यूँ ही सुनते रहिए। माँ बाप की सेवा ज़रूर करिए, प्रकृति का ख्याल जो है वह ज़रूर रखिए। नमस्ते धर्मशाला।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: पता नहीं टीवी है।
2: और भाई लास्ट बेंच को मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन है?
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूटी बाजा।

ये गजल भी मैंने अर्ज किया था ना, कुछ मेरी तरफ से मेरी फरमाइशों पर सुन लें, कुछ फिर आपकी फरमाइशें मेरे सर माथे पे वो सुनाऊंगा। ये भी नई गजल है, आगा बिस्मिल की ये गजल है।

ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। तो गजल पेशी खिदमत है आगा बिस्मिल, गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ना मजा आया तो छोड़ दूंगा बीच में, उसकी रहमत से, अल्लाह की रहमत से अगर ना मजा आया तो छोड़ दूंगा, ये वादा रहा, मगर गौर की जरूरत है।

एक चीज ऊपर वाले की ये देन है, उसकी मेहरबानी से है, अल्लाह की मेहरबानी से। 3 ऑक्टेव्स जिसको हम अपनी मौसीकी की जबान में सब तक कहते हैं, ये सब तक होती है 1 2 3, तो ये पूरी एक जैसी आवाज सुनाई दे।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच को मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में, और रहते ही कौन है?
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
5: गजब टूबी बाजा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
3: पता नहीं उसे टीबी है।
1: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
4: पता है ना मुझे टीबी है।
1: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
5: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
6: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
7: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
6: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
7: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
6: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
7: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
6: कसम खाओ।
7: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
6: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन है?
8: भारी मिस्टेक हो गया सर।
7: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
9: गजब टोपी बाजा।

चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा।

0: राहुल, ये प्यार कैसे होता है?
1: प्यार प्यार तो बस हो जाता है, कैसे ना तुम जानो।

रंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।